0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: लादे फेरे।
6: हां जी हां जी, यो

0: मैं रतन नूरा और काम करता हूँ खत्म पूरा बे लव यू ऑल भावनाओं को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी कभी ना कहना हांजी ना जी, ना जी।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂ ਜੀ 1600 ਚੌਕਰ।

is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: यो हाँ जी 1674 है।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: और जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो,
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर।

0: Imagination is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 1674.
2: लो जी तुहाडी नजर है पोला
3: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म
4: पोले ने कसूते फसाते
3: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो ओए पोले ओए 2

वैसे एक गाना तो पुराना है तुहानू पता ही है, पर अजकल फिल्मां दे विच हुण रीमेक कर करके गाने आंदे ने ते सानू भी चलाने पैंदे ने ते तुसीं भी सुन लैंदे हो, इंजॉय करदे हो। प्रोग्राम पर्दा बेपर्दा दे विच रेडियो हांजी 1674 AM दे उत्ते तुहाडा सारयां दा स्वागत, मैं गौतम कपिल। पहला ही गाना पति पत्नी और वो दो फिल्म दे विचों जिहदे च आयुष्मान खुराना दे नाल सारा अली खान सी, रकुल प्रीत सी, वामिका सी, फिल्म चली नहीं इस करके सारे सी सी हुण भी सी सी ते ये गाना हुण क्योंकि ये तुसी समझ जाया करो, हुण तां इन्नी बार अपनी गल हो चुकी है कि कोई भी पुराने गाने नू रीमेक करके लैके आना काम तनिष्क बागची दा हुंदा। इन्होंने यह डोर संभाली हुई है, म्यूजिक दे विच कोई ज़्यादा करना नहीं हुंदा। इंदवीर होना दा यह गाना पुराना लिखा हुआ सी, गाना उही है, सेम ही है, बस उहदे च रीअरेंज किया, डिडम डिडम डिडम ये सारा काम किया है उन्होंने मिक्सिंग मास्टरिंग। तो इस बार गाया गाना जिहड़ा है वह की नाम है गुरु रंधावा तो गुरु रंधावा दे जिहड़ा उन्हां दा दिल्ली दे विच एक ओह है पश्चिम बिहार दे विच उन्हां दा जिम है, मतलब चलांदे ने ओह अपना जिम, उत्थे फायरिंग हुई है ते ओह फायरिंग 24HS फिटनेस करके उहदा नाम हैगा। ते ओह फायरिंग इस करके हुई है कि बिश्नोई गैंग ने इहदी जिम्मेदारी लैके कहा है कि सलमान खान दे नाल इहनां दी नेड़ता वध रही सीगी, इस करके इहनां नूं इह वार्निंग दित्ती हैगी। हुण सलमान खान आला तां रौला तुहानूं पता ही है, 1998 च सलमान खान किते राजस्थान गए सी, उत्थे ओह काले हिरन दा उन्होंने शिकार करता सी, उदों तों ही बिश्नोई गैंग सलमान खान दे, उदों तों नहीं आ हुण कमजे मगर पिया, उदों तां जम्मे भी नहीं होणे इह, ते हुण इह इहनां दे मगर पए ने। उदों फिल्म हम साथ साथ है दी शूटिंग दे उत्ते गए हुए सी, जिहड़ी सैफ अली खान तब्बू सोनाली बेंद्रे वाली फिल्म सीगी, ते हुण ओह कह रहे ने कि काला हिरन दी तां असीं पूजा करदे हैगे हां जी, ते तुसीं उहनां नूं किवें मारता उदों, इन्ने साल पुराना मामला हुण कढ के होले आंदा है। खैर जदों पुराने गाणियां नूं कढ कढ के दुबारा चलाया जा सकदा, पुराने मामलियां नूं क्यों नहीं कढ़िया जा सकदा, अनटिल किसे दा कोई नुकसान ना हो रहा होवे। कुछ क पुराने गाणियां दे नाल हालांकि उह नवें आ रहे ने, जिवें हुण 26 जून नूं फिल्म रिलीज़ हो रही हैगी है वैलकम टू जंगल, मैं इहदा किते टीज़र सी या ट्रेलर सी जो भी सी उह देख बैठे, तुसीं भी देख लिया होणा, ते जिहड़े ट्रेलर देख के ही नहीं सौं पैंदी हुंदी हैगी भी नहीं इह फिल्म तां देखणी नहीं हैगी, इह उह फिल्मां चों है जिहदा ट्रेलर देख के ही सौं चुक ली सीगी भी ना थिएटर च जाके नहीं इह फिल्म देखनी हैगी, एवें पैसे बर्बाद करने, OTT ते भी नहीं देखनी ते उहदे ते भी नहीं देखनी, अपना टाइम वेस्ट कानू करना इस फिल्म दे उत्ते। पर इह फिल्मां दीआं गल्लां तुहाडे नाल जरूर करदे रहांगे, वैलकम टू जंगल दी भी गल करांगे, इस जंगल में आपका स्वागत है, क्योंकि यह जंगल हैगा फिल्मी जंगल। पर्दा बेपर्दा प्रोग्राम दे विच नवे नवे गाने ते फिल्मां दीआं जानकारियां, कैलेंडर, बिजनेस, बहुत कुछ, उच्चा लम्मा कद दा रीमेक। गुड थिंग ये है कि तनिष्क बागची ने इस नूं रीअरेंज नहीं किया।

0: बोला।
1: ओए पुले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: बोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए टू, कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा कला विच देखना ना भुलियो। ओए भोले ओए टू।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन, विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: है पोला।
1: ओए पोले ओए दी, जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: पोले ने कसूते फसाते
1: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2
0: पोला।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, दिस इज उमंग कुमार और प्यार से लोग मुझे ओके कहते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। कीप लिसनिंग।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
2: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
1: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
2: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
1: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
2: आहो जी आहो।
1: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्स्टन विच वी तुहाडी सेवा विच।

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
3: और जो हुकम मेरी सरकार।
2: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
3: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
2: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
3: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
4: ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ 88.4।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

रेडियो हाँ जी 1674 एम ते मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लेके हुए हाजिर। दो रिपोर्ट अज दे दिन जिन्हां दा जिक्र करना है, जिन्हां दे उत्ते गल करनी है। एक ता ईरान ते अमरीका दे विच डील हुई है, समझौता होया। सुनन दे विच हैरानी हो रही है कि जदों लड़ाई हुई सी तां तीन जने सी, जदों समझौता होया तां दो जने रह गए ने, तीजा कित्थे है? उहदा जिक्र अज दी रिपोर्ट च करांगे। ते इस दे विच बाकी कित्थे ने, यानी कि अमरीका का की बनू, आस्ट्रेलिया का की बनू, भारत का की बनू। अमरीका का तो चलो खैर जो बनू सो बनू, भारत ते आस्ट्रेलिया के हवाले के नाल भी गल करांगे। एक यह रिपोर्ट ते दूजी रिपोर्ट जिहड़ी अकाल तख्त साहब की फसील तो फरमान जारी होया कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान दे नू जिहड़ा उह ना मन्निया जावे ते गुरु दोखी करार दिता गया हैगा। उस तो बाद मुख्यमंत्री दी की टिप्पणी आई है, प्लस इहदे नाल अकाल तख्त साहब दा जिहड़ा इह फरमान हुंदा है किस तरीके दे नाल लागू हुंदा है, सिखां दे तख्तां दा संकल्प की है, और की इस जिदा अदालतां दे विच हेठली अदालत दे हुकम नूं उपरली दे विच जां फिर क्रॉस अदालतां दे विच इह लैके जाया जा सकदा कि अकाल तख्त ते बाकी तख्तां दे विचकार फर्क हैगा, कि अकाल तख्त दे हुकम दे बारे जे कोई दूसरा तख्त कह दे उस नूं टालिया या बदलिया जा सकदा, इहदे उत्ते भी गल करांगे। दो ऐसे मुद्दे जो वक्खो वक्खरे ने, हो सकदा है कि तुहानूं लगे कि सीधे तौर दे उत्ते साडा कोई संबंध है नहीं, पर फिर भी जिवें अगे भी इनसाइट रिपोर्ट दे विच किहा कि इह खबरां दे अंदर दी तह तक जाण दी आपां कोशिश करदे हां इस प्रोग्राम दे विच। सो तुहाडा लैणा देणा सीधे तौर दे उत्ते होवे ना होवे, पर फिर भी इह जानकारियां हासिल कर लिया करो क्योंकि इहदे नाल फायदा ही होगा। वो कहने हैं कि सियाणियां दा कहा ते औले दा खादा मगरों पता लगता है, इनसाइट रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही औले की तरह असर करेगी। आओ शायद करते हैं शुरुआत अज्ज दे इस प्रोग्राम की, इनसाइट रिपोर्ट रेडियो हाँ जी 1674 एम ते।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी रेडियो हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।
3: लाओ जी तुहाडी नजर है बोला।
4: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हास्य मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
5: पोले ने कसूते फसाते।
4: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दिनाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भूलियो। ओए पोले ओए 2 थोड़ी मोटे नाल मोड़ा मिला के थोड़ी तरक्की दी रानू होर भी सौखा अते सुरक्षित बनाउन दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
6: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज थोड़ी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे थोड़ी अपनी टोयोटा चूज करन ले जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
4: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लॉन्ग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा द स्मार्ट चॉइस।
7: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया की जुगाड़ लाया है?
8: जुगाड़ नहीं ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा जिन्ना ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू PR दी राह भी विखाई। एना ही नहीं ए स्टूडेंट वीजा AAT अपील्स स्किल्ड वीजा PR US विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
7: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
8: हां जी अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
9: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
9: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
9: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। सुनो जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
9: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
4: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना तुसी आ किथे जा रहे हो?
9: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
4: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन सिल्वर आइटम्स पूजा आइटम्स सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
9: आहो जी आहो
4: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
10: हां जी 1600

0: लाओ जी तुहाडी नजर है भोला।
1: ओए भोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
2: भोले ने कसूते फसाते
1: ओए भोले ओए टू कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नू पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए भोले ओए टू
3: भोला भाई।
4: हाय मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हां जी 1674 AM। और ये जिनको जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हां जी 1674 AM। थैंक यू।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउन लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Hanji, 1674 AM.
4: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
4: यार तू इतने इनी चेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
5: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ये स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
4: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
5: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
6: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच। सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
7: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
6: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
7: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच,
6: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
7: आहो जी आहो,
6: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
8: हां जी हां जी, ओए हां जी हां जी,
9: हां जी रेडियो

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाँ जी हाँ जी, ओए हाँ जी हाँ जी,
3: हाँ जी रेडियो।
4: बेबी मेरी हाय हाय कोली मारे, अखियों से हाय हाय कोली।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हाँ जी हाँ जी
1: रेडियो हाँ जी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्स टन विच वी तुहाडी सेवा विच। हुन तुहाडे मोढे नाल मोढा मिला के तुहाडी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा,
2: जिथे है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई, जो ने एक दहाके तो वेर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जीलोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।
3: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
4: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
3: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
4: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: लाओ जी तुहाडी नजर है पोला।
0: ओए पोले ओए दी जबरदस्त कामयाबी तो बाद गीत MP3 ते जगजीत संधू फिल्म्स ले आए ने हासे मस्ती ते इमोशन नाल भरपूर फिल्म।
6: पोले ने कसूते फसाते।
0: ओए पोले ओए 2 कॉमेडी ड्रामा ते एंटरटेनमेंट दा पूरा तड़का 12 जून नु पूरी फैमिली दे नाल नजदीकी सिनेमा घरां विच देखना ना भुल्यो। ओए पोले ओए 2।

0: ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ ਪਤਾ ਫੇਰ ਕਿਹੜਾ ਰੇਡੀਓ ਵੱਜਦਾ।
1: ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ
2: Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station. Radio Hanji, 1674 AM, 24/7 Indian Radio, Sydney ka apna Indian Radio Station.
3: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
4: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
3: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
4: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
3: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
4: आहो जी आहो,
3: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
5: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
6: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
5: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
6: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

रेडियो हाँ जी 1674 एम ते मैं गौतम कपिल प्रोग्राम इनसाइट रिपोर्ट लेके हुए हैं। हाजिर दो रिपोर्ट अज दे दिन जिन्हों का जिक्र करना है जिन्हों के उत्ते गल करनी है। एक तो ईरान ते अमरीका दे विच डील हुई है समझौता हुआ है। सुनन दे विच हैरानी हो रही है कि जो लड़ाई हुई सी ता तीन जाने सी जो समझौता होया ता दो जाने रह गए ने तीजा कित्थे है उहदा जिक्र अज दी रिपोर्ट च करांगे। ते इस दे विच बाकी कित्थे ने यानी कि अमरीका का की बनू आस्ट्रेलिया का की बनू भारत का की बनू। अमरीका का तो चलो खैर जो बनू सो बनू भारत आस्ट्रेलिया के हवाले के नाल भी गल करांगे। एक यह रिपोर्ट तो दूजी रिपोर्ट जिहड़ी अकाल तख्त साहब की फसील तो फरमान जारी होया कि मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान दे जिहड़ा वो ना मनिया जाए तो गुरु दोखी करार दिता गया है। वो तो बाद मुख्यमंत्री दी की टिप्पणी आई है प्लस ये नाल अकाल तख्त साहब का जिहड़ा ये फरमान हुंदा है किस तरीके दे नाल लागू हुंदा है सिखां दे तख्तां दा संकल्प की है और की इस जिदा जिदा अदालतां दे विच हेठली अदालत दे हुकम नूं उपरली दे विच जां फिर क्रॉस अदालतां दे विच ये लैके जाया जा सकदा है कि अकाल तख्त ते बाकी तख्तां दे विचकार फर्क हैगा कि अकाल तख्त दे हुकम दे बारे जे कोई दूसरा तख्त कह दे उस नूं टालिया या बदलिया जा सकदा है। ये उत्ते भी गल करांगे। दो ऐसे मुद्दे जो वक्खो वक्खरे ने हो सकदा है कि तुहानूं लगे कि सीधे तौर दे उत्ते साडा कोई संबंध है नहीं पर फिर भी जिवें अगे भी इनसाइट रिपोर्ट दे विच कहा है कि ये खबरां दे अंदर दी तह तक जाण दी आपां कोशिश करदे हां इस प्रोग्राम दे विच। सो तुहाडा लैणा देणा सीधे तौर दे उत्ते होवे ना होवे पर फिर भी ये जानकारियां हासिल कर लिया करो क्योंकि ये नाल फायदा ही होगा। वो कहने कि सियाणियां दा कहा ते औले दा खादा मगरों पता लगता है। इनसाइट रिपोर्ट भी कुछ ऐसे ही औले की तरह असर करेगी। आओशाद करते हैं शुरुआत अज्ज दे इस प्रोग्राम की। इनसाइट रिपोर्ट रेडियो हाँ जी 1674 एम ते।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो,
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच भी तुहाडी सेवा विच।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji. Hi, this is Salman Khan and you're listening to Radio Hanji.

0: पूरा भी लव यू ऑल भावना को समझो।
1: दोस्तों मैं हूँ सुनील पाल और आप लोग सुन रहे हैं मुझे रेडियो हांजी पर, रेडियो हांजी 1674 AM। अब आपका AM सिर्फ रेडियो हांजी सुनने होना चाहिए। हांजी हांजी, अभी ना कहना ना जी ना जी।

This is Ali Asghar here on Radio Haji 1674 AM. सुनते रहिए, सुनाते रहिए, बजाते रहिए, जो करना है करिए.

0: यार तू इतनी नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: सत श्री अकाल टू ऑल द रेडियो हांजी लिसनर्स।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो।
3: सत श्री अकाल, शुभ बोए बादशाह, तुसी सुन रहे हैं 1674 AM रेडियो। हां जी।

आंखों का एतबार मत करना, ये उठे तो कत्ले आम करती हैं। कोई इनकी निगाहों पे पहरा लगाओ यारों, ये निगाहों से ही खंजर का काम करती हैं।

0: Man is now the ultimate power in the universe.
1: Radio Haji 16748.
2: आपकी खिदमत में मैं अपनी चंद गजलें पेश करने की इजाजत चाहती हूँ. इजाजत है.

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: रेडियो हाँ जी 1674 AM।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: Hi, this is Imran Hashmi and you're listening to me on Radio Haji.

0: गौड़ी सुखमी महला पंजवा सुखमी सुख अमृत प्रवनाम भत जना कै मन विश्राम सलोक एक ओंकार सतगुर प्रसाद
1: आद गुर ए नमै जुगाद गुर ए नमै सतगुर ए नमै श्री गुरुदेव ए नमै
0: सतनाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावो कल कलेश तन माहे मिटावो
1: सिमरो जस प्रसंबर एक है नाम चबत अगनत अनेक है
0: वेद पुराण सिमर सुधाखर कीने राम नाम एक अखर
1: इनकै जीव सावे ताकि महिमा गनी न आवे
0: कांखी एक है दर्श तुहारो नानक गुण संग मोहे उधारो
1: सुखमनी सुख अमृत प्रवनाम भगत जना कै मन विश्राम रहाओ
0: प्रभु कै सिमरन गर्भ नवसै प्रभु कै सिमरन दुख जम नसै
1: प्रभु कै सिमरन काल पर हरै प्रभु कै सिमरन दुश्मन टरै
0: प्रभु सिमरत काछ बिघन लागै प्रभु कै सिमरन आनंद न जागै
1: प्रभु कै सिमरन भव न व्यापै प्रभु कै सिमरन दुख न संतापै
0: प्रभु कै सिमरन सार कै संग सर्व निधान नानक हर अंग
1: प्रभु कै सिमरन सिद्ध नौ नित प्रभु कै सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध
0: प्रभु कै सिमरन जपता पूजा प्रभु कै सिमरन बिनसै दूजा
1: प्रभु कै सिमरन तीर्थ स्नानी प्रभु कै सिमरन दरगाह मानी
0: प्रभु कै सिमरन होय सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला
1: सिमरै जिने आप सिमराय नानक ताकै लागो पाए
0: प्रभु कै सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा
1: प्रभु कै सिमरन तिसना बुझै प्रभु कै सिमरन सब के सूझै
0: प्रभु कै सिमरन नाहीं जम तरसा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा
1: प्रभु कै सिमरन की मल जाए अमृत राम रिद महे समाए
0: प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासन दसना
1: प्रभु को सिमरै सी धनवंते प्रभु को सिमरै सी पतवंते
0: प्रभु को सिमरै सी जन परवान प्रभु को सिमरै सी पुरख प्रधान
1: प्रभु को सिमरै सी बेमुहताजे प्रभु को सिमरै सी सर्व के राजे
0: प्रभु को सिमरै सी सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा अविनाशी
1: सिमरन ते लागे जिन आप दयाला नानक जन की मंगे रवाला
0: प्रभु को सिमरै सी पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी
1: प्रभु को सिमरै सी मुख सुहावै प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै
0: प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता
1: प्रभु को सिमरै तिन अंध घनेरे प्रभु को सिमरै बसे हर नेरे
0: संत कृपा ते आंदन जाग नानक सिमरन पूरै भाग
1: प्रभु कै सिमरन कारज पूरै प्रभु कै सिमरन कभु न जूरै
0: प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी
1: प्रभु कै सिमरन निचल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विगासन
0: प्रभु कै सिमरन अनहर चुनकार सुख प्रभु सिमरन का अंत न पार
1: सिमरै से जन जन कृप मैया नानक तिन जन सरनी पैया
0: हर सिमरन कर भत प्रगटाए हर सिमरन लाग बेद उपाए
1: हर सिमरन पैसे जति दाते हर सिमरन नीचो कुण जाते
0: हर सिमरन धारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना
1: हर सिमरन क्यों सगल अकारा हर सिमरन मैं आपने अंकारा
0: कर कृपा जिसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ इक श्लोक
0: दीन दर दुख भंजना घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रसाथ सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: या मात पिता सुतमीत ना भाई मन उहा नाम तेरा संग सहाय
0: जह महा भयान दूत जम दल तह केवल नाम संग तेरा चले
1: जह मुश्किल होवे अत भारी हर को नाम खिन माहे उधारी
0: अनक पुनः चरण करत नीता रह हर को नाम कूट पापर हर है
1: गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख गनेरे
0: सगल सृष्ट को राजा दुखिया हर का नाम जप तुहि सुखिया
1: लाख करोड़ी बंधन पर है हर का नाम जपत निस्तर है
0: अनक माया रंग तिख न बुझावे हर का नाम जपत आगावे
1: ये मार्ग हो जात गीला तै हर नाम संग होत सुहेला
0: ऐसा नाम मन सदा ध्याई है नानक गुरमुख परमगत पाई है
1: छूटत नाही को लख बाही नाम जपैता पार पराही
0: अनक बगंजह आए संघार है हर का नाम तत्काल उधार है
1: अनक जून जन मैं मर जाम नाम जोत पावे विश्राम
0: हो मैला मल कब हो ना धोवै हर का नाम कूट पाप खोवै
1: ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाई है साध कै संग
0: जिह मार के गन जाहे न पूसा हर का नाम उहा संग तोसा
1: जै पेंडे महा अंध गुबारा हर का नाम संग उजियारा
0: जहां पंथ तेरा को न सुजानू हर का नाम तह नाल पछानू
1: जा महा बयान तप प्रोघाम ते हर के नाम की तू ऊपर छाम
0: जहां तिरखा मन तुझ आ कर खै तह नानक हर हर अमृत बरख है
1: भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ऊट हर कै नाम उधरे जन कोट
1: हर जस कत संत दिन रात हर हर औखत साध कुमार
0: हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान
1: मन तन रंग रते रंग एक है नानक जन कै बिरद विवेक है
0: हर का नाम जन को मुक्त जोत हर कै नाम जन को तृप्त भोगत
1: हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत का परे न भंग
0: हर का नाम जन की वडियाई हर कै नाम जन शोभा पाई
1: हर का नाम जन को भोग जो हर नाम जपत कछना है बिजो
0: जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा
1: हर हर जन के माल खजीना हर धन जन को आप प्रभ दीना
0: हर हर जन कै ओट सतानी हर प्रताप जन अवर न जानी
1: ओत पो जन हर सराते सुन समाद नाम रसमाते
0: आठ पहर जन हर हर जपै हर का भत प्रगटनी छपै
1: की भगत मत पौ करै नानक जन संकेते तरै
0: पार जात एहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम
1: सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संत रिदवस है संत प्रताप दुर सब नसै
1: संत का संग उड़ भागी पाई है संत की सेवा नाम दे आई है
0: नाम तुल का छबर न होए नानक गुरमुख नाम पावे जन कोए
1: सुखमनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दो श्लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमरति पेखे सर्व टंडोल पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल सत नाम श्री वाहिगुरु अष्टपदी
1: आप ताव ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमरत वख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग मन मध्य फिरे ਕਿਰਿਆ
1: ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਬਹੁ ਜਤਨਾ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਹੋ ਮੈਂ ਬਹੁ ਰਤਨਾ
0: ਸਰੀਰ ਕਟਾਏ ਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਾਤੀ ਵਰਤ ਨੇਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਭਾਂਤੀ
1: ਨਹੀਂ ਤੁਲ ਰਾਉ ਨਾਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨੂ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਇੱਕ ਵਾਰ
0: ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਮੀ ਫਿਰੈ ਚਰ ਜੀਵੈ ਮਹਾ ਉਦਾਸ ਤਪੀਸਰ ਥੀਵੈ
1: ਅਗਨ ਮਾਏ ਹੋ ਪ੍ਰਾਨ ਕਨਕ ਅਸ ਹੈ ਬੋਰਦਾਨ
0: ਲਿਉਲੀ ਕਰਮ ਕਰੈ ਬਹੁ ਆਸਨ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਯਮਤ ਸਾਧਨ
1: ਨਿਮਕ ਨਿਮਕ ਕਰ ਸਰੀਰ ਕਟਾਵੈ ਤੋ ਵੀ ਹੋ ਮੈਂ ਮੈਲ ਨਾ ਜਾਵੈ
0: ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਸੰਸਰ ਕਛ ਨਾਹੇ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪਤ ਗਤ ਪਾਹੇ
1: ਮਨ ਕਾਮਨਾ ਤੀਰਥ ਦੇ ਛੁਟੈ ਗਰਭ ਗੁਮਾਨ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਹੁਟੈ
0: ਸੋਚ ਕਰੈ ਦਿਨ ਸਾ ਰਾਤ ਮਨ ਕੀ ਮੈਲ ਨਾ ਤਨ ਤੇ ਜਾਸ
1: ਦੇਹੀ ਕੋ ਬੋ ਸਾਧਨਾ ਕਰੇ ਮਨ ਤੇ ਕਬੂ ਨੂੰ ਵਿਖਿਆ ਟਰੈ
0: ਜਲ ਤੋ ਵੈ ਬਹੁ ਦੇਹ ਅਨੀਤ ਸੁਧ ਕਹਾ ਹੋਏ ਕਾਚੀ ਭੀ
1: ਮਨ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਊਚ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਪਤਤ ਬਹੁ ਮੂਚ
0: ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਪ ਜੰ ਕਾ ਭਾਉ ਵਿਆਪੈ ਅਨਕ ਜਤਨ ਕਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਧਰਾਪੈ
1: ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੰਨੀ ਬੂਜੈ ਕੋਟ ਪਾਵ ਦਰਗੈ ਨੀ ਸਿਜੈ
0: ਛੂਟ ਸਨਾਹੀ ਉਬ ਪਾਇਆਲ ਮੋਹਿ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ ਜਾਲ
1: ਅਵਰ ਕਰਤੂ ਸਗਲੀ ਜਮਡਾਨੈ ਗੋਬਿੰਦ ਭਜਨ ਬਿੰਤਿ ਨੀਮਾਨੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦੁਖ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਬੋਲੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ
1: ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਜੇ ਕੋ ਮੰਗੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਗੈ
0: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣਾ ਦੁਖ ਮਿਟਾਵੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਹਿਰਦੈ ਸਦ ਗਾਵੈ
1: ਜੇ ਕੋ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾ ਲੋਰੇ ਸਾਧ ਸਿੰਘ ਇਹੋ ਮੈਂ ਛੋਰੇ
0: ਜੇ ਕੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤੇ ਡਰੈ ਸਾਜਨਾ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਾਰੈ
1: ਜਿਸਨ ਕੋ ਪਵਦਸ ਪਿਆਸਾ ਨਾਨਕ ਤਾ ਕੈ ਬਲ ਬਲ ਜਾਸਾ
0: ਸਗਲ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾ ਕੈ ਮਿਟੈ ਬਿਮਾਨ
1: ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣਾ ਨੀਚਾ ਸੋ ਉਗਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ
0: ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਹੋਏ ਸਗਲ ਕੀ ਰੀਨਾ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਨ ਘਟ ਘਟ ਚੀਨਾ
1: ਮਨ ਆਪਣੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਮਟਾਨਾ ਪੇਖੈ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਸਾਜਨਾ
0: ਸੁਖ ਦੁਖ ਜਨ ਸੰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤਾ ਨਾਨਕ ਪਾਪੋਂ ਨਿਹਲੇ ਪਾ
1: ਨਿਰਧਨ ਕੋ ਧਨ ਤੇਰੋ ਨਾਉ ਨਿਥਾਵੇਂ ਕੋ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਥਾਉ
0: ਨਿਮਾਨੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੋ ਦੇ ਬਹੁਦਾਨ
1: ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਰ ਸੁਆਮੀ ਸਗਲ ਘਟਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ
0: ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਜਾਨ ਹੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ
1: ਤੁਮਰੀ ਉਸਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣਸ ਕੋਏ
0: ਸਰਬ ਧਰਮ ਹੈ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ
1: ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ
0: ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਾਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ
1: ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸ ਨੂੰ ਰਸਮ ਬਖਾਣੀ
0: ਸਗਲ ਥਾਂ ਤੇ ਉਹ ਉੱਤਮ ਥਾਂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਘਟ ਬਸੈ ਹਰ ਨਾਮ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਤਿੰਨ ਸਲੋਕ
0: ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰ ਇਹ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲ ਜਿਨ ਕੀ ਆਤਿਸ਼ ਚੀਤ ਰੱਖ ਨਾਨਕ ਨਿਭੀ ਨਾਲ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਮਈਆ ਕੀ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਨੀ ਕਵਨ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਨ ਦਸ਼ਟਾਨੀ
0: ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਡ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮਹਿ ਜਿਨੈ ਉਬਾਰਿਆ
1: ਬਾਰ ਬਸਤਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੈ ਦੂਤ ਪਰ ਜੋਬਨ ਭੋਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ
0: ਬਿਰਧ ਭਇਆ ਉਪਰ ਸਾਖ ਸੈਨ ਮੁਖ ਪਿਆਉ ਬੈਠ ਕਉ ਦੈਨ
1: ਇਹੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕੁਛੂ ਨਾ ਬੂਝੈ ਬਖਸ਼ ਦੇਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਧਾਰ ਉਪਰ ਸੁਖ ਬਸਹਿ ਸੁਤ ਭਰਾਤ ਮੀਤ ਬਣਤਾ ਸੰਘਰਸ ਹੈ
1: ਜਿਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀਵੇ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਪਾਵਕ ਅਮੁਲਾ
0: ਜੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਸਾ
1: ਦੀਨੇ ਹਸਤ ਪਾਵ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗਰਚਨਾ
0: ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੂੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੇ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇ ਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ
1: ਆਦ ਅੰਨ ਜੋ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ
0: ਜਾ ਕੀ ਸੇਵਾ ਨਮ ਨਿਦ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸੋ ਮੂੜਾ ਮਨ ਹਿਲਾਵੈ
1: ਜੋ ਠਾਕਰ ਸਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ
0: ਜਾ ਕੀ ਟਹਿਲ ਪਾਵੈ ਦਰਗੈ ਮਾਨ ਤਿਸਹਿ ਬਸਾਰੈ ਮੁਗਧ ਅਜਾਨ
1: ਸਦਾ ਸਦਾ ਭੂਲਨ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਅਪਾਰ
0: ਰਤਨ ਤਿਆ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੈ ਸਾਚ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੈ
1: ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਤਰ ਕਰਮਾਨ ਜੋ ਹੋਵਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨ
0: ਛੋੜ ਜਾਏ ਤਿਸ ਕਾ ਸਰਮ ਕਰੈ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਾਰੈ
1: ਚੰਦਨ ਲੇ ਪੁਧਾਰੈ ਤੋਏ ਗਰ ਤੋ ਪੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸੰਗ ਹੋਏ
0: ਅੰਧ ਕੂਪ ਮੈਂ ਪਤਤ ਵਿਕਰਾਲ ਨਾਨਕ ਕਾਢ ਲੇਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਇਆ
1: ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ
0: ਬਾਹਰ ਭੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪ ਸਨਾਹੇ ਕਛ ਕਰੈ ਛਪਾਇਆ
1: ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋ ਸਵਾਨ
0: ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕੈਸੇ ਤਰੈ ਅਥਾਹ
1: ਜਾ ਕੇ ਅੰਤਰ ਵਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾ
0: ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰ ਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉੜਨ ਵਿਹਾਵੈ
1: ਕਹਾ ਬੁਜਾਤ ਬੁਜੈ ਡੋਰਾ ਨਿਸਕੀ ਤੋ ਸਮਝੇ ਭੋਰਾ
0: ਕਹਾ ਵਿਸ਼ਨ ਪਦ ਗਾਵੈ ਗੁੰਗ ਜਤਨ ਕਰੈ ਤੋ ਪੀ ਸੁਰ ਭੰਗ
1: ਕਹਾ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋਤ ਕੂਹਾ ਉਸ ਗਵਨ
0: ਕਰਤਾਰ ਕਰੁਣਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੈ ਨਾਨਕ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੈ
1: ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੋ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬਹਿ ਰਾਈ ਤਾ ਸੋ ਪੀਤ
0: ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਭੀਤਰ ਵਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੈ
1: ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾਨੈ ਮਨੈ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨ ਆਵੈ ਮੂੜੈ ਚੀਤ
0: ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹੋ ਝੂਠ ਵਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਧਰੋਹੋ
1: ਇਹੋ ਜੁਗਤ ਬਿਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਨ ਕਰ ਕਰਮ
0: ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ
1: ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂ ਗਨੇਰੇ
0: ਕੋਈ ਨ ਜਾਣੈ ਤੁਮਰਾਂਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ
1: ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰਧਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ
0: ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮੈਂ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਨੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਅੱਠ ਚਾਰ ਸਲੋਕ
0: ਦੇਨ ਹਾਰ ਪ੍ਰਭ ਛੋੜ ਕਹਿ ਲਾਗੈ ਆਨ ਸੁਆਏ ਨਾਨਕ ਕਹੂ ਨਸੀ ਜਈ ਬਿਨਾਵੈ ਪਤ ਜਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਦਸ ਵਸਤੂ ਲੈ ਪਾਛੇ ਪਾਵੈ ਇੱਕ ਵਸਤ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੋਟ ਗਵਾਵੈ
0: ਏਕ ਭੀਨਾ ਦੇ ਦਸ ਭੀਹਰ ਲੈ ਤਉ ਮੂੜਾ ਕਹੁ ਕਹਾਂ ਕਰੇ
1: ਜਿਸ ਠਾਕਰ ਸੋ ਨਾਹੀ ਚਾਰਾ ਤਾ ਕੋ ਕੀਜੈ ਸਦ ਨਮਸਕਾਰਾ
0: ਜਾ ਕੈ ਮਨ ਲਾਗਾ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ ਸਰਬ ਸੂਖ ਤਾਹੂ ਮਨ ਬੂਠਾ
1: ਜਿਸ ਜਨ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਮਨਾਇਆ ਸਰਬ ਥੋਕ ਨਾਨਕ ਤਿਨ पाया
0: अगणत साहो अपनी देरास खात पीत बरत आनंद उलास
1: अपनी अमान कछ बहुर साले अज्ञानी मन रोस करे
0: अपनी प्रति तापी खूब है बहुर उसका विश्वास न होवे
1: जिसकी बस सागे राख है पप की आज्ञा माने मत है
0: उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल
1: अनक पात माया के हे सर पर होत जान अने
0: बिर की छाया सो रंग लावे ओ बिन सह ओ मन पछतावे
1: ज्योति सह सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार
0: बटाऊ स्यो जो लावे नेह ताको हाथ नावे केहे
1: मन हर के नाम की पीत सुखदाई कर कृपा नानक आप ले लाई
0: मिथ्या तन धन कुटम सुबाया मिथ्या हो मैं ममता माया
1: मिथ्या राजु मंतन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल
0: मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता
1: मिथ्या त्रो मोह अभिमान मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान
0: अस्त्र भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण
1: मिथ्या शरण पर निंदा सुने मिथ्या हस पर दरु कुहिरे
0: मिथ्या नेत्र पेखत पर तिर रूपाद मिथ्या रसना भोजन अनुसवाद
1: मिथ्या चिन पर विकार कुतावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा मिथ्या बास लेत विकारा
1: बिन मुझे मिथ्या सब पै सफल दे नानक हर हर नाम ले
0: बिरथी साक्त की आर जा सच बिना कह होवत सूचा
1: बिरथा नाम बिना तन अंध मुखावता कह दुर्गंध
0: बिन सिमरन दिन रैन बिरथा बिहाय मेघ बिना ज्यों खेती जाए
1: गोविंद भजन बिन बिथे सब काम ज्यों कर प्रते निरार धाम
0: धन धन ते जन जिह घट बस्यो हर नाओ नानक ताकै बल बल जाओ
1: रहत वर कछ अवर कमावत मानी पीत मुखो गंडलावत
0: जानन हार प्रभु प्रवीण बाहर भेख न काहू पीन
1: और उपदेश है अपना करै आवत जावत जन मैं मरै
0: जिसकै अंतर बसै निरंकार तिसकी सीख तरै संसार
1: जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक उंजन जन प्राता
0: करो बेनती पार ब्रह्म सब जानै अपना किया आपह मानै
1: आपे आप करत नवेरा किसे दूर जिनावत किसे बुझावत नेरा
0: उपाव स्यान सगल ते रहत सब कछ जानै आत्म की रहत
1: पावै तिसलै लड़ लाए थान थनंतर रहा समाए
0: सो सेवक जिस कृपा करी निमख निमख जप नानक हरी
1: सुख मनी सुख अमृत प्रभ नाम भग जना कै मन विश्राम अठ पंज सलोक
0: काम क्रोध अर लोभ मोह बिनस जाए अहमेव नानक प्रशर नागति कर प्रसाद गुरुदेव सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जय प्रसाद छति अमृत खाहे तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत परमगत पावे
1: जय प्रसाद वशिष्ठ मंदिर तिसे त्याज सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख बसना आठ पहर सिमर हो तिस रसना
1: जय प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याई त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटंबर हंडावे तिसे त्याका तवर लुभावे
1: जय प्रसाद सुसे सुई जय मन आठ पहता का जस गवी जय
0: जय प्रसाद तुड सब को मान मुखता को जस रसन बखाने
1: जय प्रसाद तिरहता धर्म मन सदा त्याए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जपत दर गए मान पावे नानक पथ सेती घर जावे
1: जय प्रसाद अरो कंचन देही लिवलाओ तिस नाम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा उला रहत मन सुख पावे हर हर जस कहत
1: जय प्रसाद तेर सगल छिद्र ढाके मन सनी प्रभ ठाकर प्रभता कह
0: जय प्रसाद तुझ को न पहुंचे मन सास सास सिमरो प्रभु उच्चे
1: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देहे नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद आभूखन पहरी जय मन तिन सिमरत क्यों आलस की जय
1: जय प्रसाद असु हस्त असवारी मन तिस पर को कबू ना बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलक तना राख पुरोई प्रभ अपने मना
1: जिन तेरी मन बंत बनाई उठत बैठ सत सहते आई
0: सहते आजो एक अलख है इहा उहा नानक तेरी रख है
1: जय प्रसाद करे पुन बहुदान मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार बिहारी तिस प्रभ को सास सास चितारी
1: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सिमरो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
1: जय प्रसाद तेरी पत्र है गुर प्रसाद नानक जस कह
0: जय प्रसाद सुने करनाद जय प्रसाद पेखे बिस्माद
1: जय प्रसाद बोले अमृत रसना जय प्रसाद सो सहजे बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है जय प्रसाद संपूर्ण फल है
1: जय प्रसाद परम गत पावे जय प्रसाद सो सह समावे
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर कत लागो गुर प्रसाद नानक मन जागो
1: जय प्रसाद तू पर संसार तिस प्रभ को मूल न मनो विसार
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूड तुता को जाप
1: जय प्रसाद तेरे कारज पूरे तिसे जान मन सदा हजूर है
0: जय प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरे तू ता सुराच
1: जय प्रसाद सब कीरत होए नानक जाप जपे जप सोए
0: आप जपाए जपै सो नाओ आप गावे सो हर गुण गाओ
1: प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमल विगास
0: सब सो प्रसन्न बसै मन सोए प्रभ दया ते मात उत्तम होए
1: शर्म निधान प्रभ तेरी माया आपो कछु ना किन्हु लया
0: जित जित लावो तित लगे हर नाथ नानक किन कह कछु न हाथ
1: सुख मनी सुख अमृत पब नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ छे श्लोक
0: ਆਗਮ ਅਗਾਧ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਖੂਜਲ ਹੋਤ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਕੋ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪੂਜੇ ਪਵਨੇਰਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸੁਬਹੁਤ ਨਵੇਰਾ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗੇ ਕੂਪਰ ਜਤਨ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬਰਨੇ ਕੌਣ ਪੁਰਾਣੀ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਹਮਾ ਹੈ ਸਮਾਨੀ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਕਤੂੰ ਧਾਵੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁ ਪ੍ਰਸੰਨ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਮੀਤ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਾਪੁਨੀ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੈਰ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬੀਂਗਾ ਪੈਰ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਘੁਮੰਦਾ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਤਾਪ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਾ ਬਾਪ
1: ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸ ਅਗੋਚਰ ਲਹਿ ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹਿ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਉਚੈ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁਲ ਉਧਾਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਟ ਕੁਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੈ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ ਜਿਸ ਧਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੈ
1: ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਭਾ ਸੁਰਦੇਵਾ
0: ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਰਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ
1: ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਾਨ ਗਮ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਛ ਕਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਭੇਟ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਕਤ ਹਰੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰ ਪਰ ਹਰੈ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾਂ ਉਹਾਂ ਸੁਹੇਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਿਛੜਤ ਹਰ ਮੇਲਾ
1: ਜੋ ਇੱਛੈ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੈ
0: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧ ਰਿਦ ਵਸੈ ਨਾਨਕ ਕੁਦਰੈ ਸਾਧ ਸੁਨ ਰਸੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਨੋ ਹਰ ਨਾਉ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ
0: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰ ਪਰ ਨਿਸਤਾਰੈ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮਿੱਠਾ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਹਟਗੜ ਡੀਠਾ
0: ਸਾਧ ਸੰਗ ਭਇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ
1: ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੇਟੈ ਸਭ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਭੇਟੈ ਸੰਜੋਗ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੈ ਜੇਤਾ ਸੁਣੈ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੈ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਤੇ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ ਸਾਧ ਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਕਾ ਨਾਹੀ ਅੰਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ
1: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਉਚ ਤੇ ਉੱਚੀ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ
0: ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਨਾਈ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਾ ਭੇਦ ਨਾ ਭਾਈ
1: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਵ ਨਾਮ ਭਗਤ ਜਨਾ ਕਹਿ ਮਨ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਅੱਠ ਸੱਤ ਸਲੋਕ
0: ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੈ ਏਕਸ ਬਿਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
1: ਦਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ ਜੈਸੇ ਸੂਰ ਸਰਬ ਕੋ ਸੋਖ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਦਿਸ ਸਮਾਨ ਜੈਸੇ ਰਾਜ ਰੰਗ ਕੋ ਲਾਗੈ ਤੁਲ ਪਵਾਨ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਧੀਰ ਜੇਕ ਜੋ ਬਸਦਾ ਕੋ ਖੋਦੈ ਕੋ ਚੰਦਨ ਲੇਪ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਇਹ ਗੁਨਾਓ ਨਾਨਕ ਜੋ ਪਾਵਕ ਕਾ ਸਹਿ ਸੁਭਾਓ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਨਿਰਮਲਾ ਜੈਸੇ ਮੈਲ ਨ ਲਾਗੈ ਜਲਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਹੋਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜੈਸੇ ਧਰ ਉਪਰ ਆਕਾਸ਼
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਿੱਤਰ ਸਤਰ ਸਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਬਿਮਾਨ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਚ ਤੇ ਉੱਚਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੈ ਸਭ ਤੇ ਨੀਚਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੇ ਜਨ ਭਏ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਪ੍ਰਭਾਪ ਕਰੇ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਗਲ ਕਿਰੀਨਾ ਆਤਮ ਰਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਚੀਨਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਸਭ ਉਪਰ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਕਛ ਬੁਰਾ ਨ ਭਇਆ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸੰਦਰਸੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਦਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਵਰਸੀ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬੰਧਨ ਤੇ ਮੁਕਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਯੋਗਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਆਨ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਉਪਰ ਆਸ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਗਰੀਬੀ ਸਮਾਹਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰ ਉਮਾਹਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਹੀ ਧੰਦਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਲੈ ਧਾਵਤ ਬੰਧਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਹੋਏ ਸੁਫਲਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਫਲ ਫਲਾ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੰਗ ਸਗਲ ਉਧਾਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਪੈ ਸਗਲ ਸੰਸਾਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਕੈ ਰੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਬਸੈ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਨਾਮ ਪਰਿਵਾਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਸਭ ਜਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਇਹ ਬੁੱਧ ਤਿਆਗ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਮਨ ਪਰਮਾਨੰਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਘਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਨਿਵਾਸ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਹੀਂ ਬਿਨਾਸ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬ੍ਰਹਮ ਕਵਿਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਏਕ ਸੰਗੀਤਾ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਹੋਏ ਅਚਿੰਤ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਨਿਰਮਲ ਮੰਤ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭਾਪ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਬੜ ਪ੍ਰਤਾਪ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਦਸ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਬਲ ਬਲ ਜਾਈਐ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਖੋਜੈ ਮਹੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਨਾਹੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੈ ਸਗਲ ਮਨ ਮਾਹੇ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕੌਣ ਜਾਣੈ ਭੇਦ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੋ ਸਦਾ ਆਦੇਸ਼
1: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਾ ਕਥਿਆ ਨਾ ਜਾਏ ਅਧਾਖਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਰਵ ਕਾ ਠਾਕਰ
0: ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੀਮਤ ਕੌਣ बखानै ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जानै
1: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का करता ब्रह्म ज्ञानी सब जीवै नहीं मरता
1: ब्रह्म ज्ञानी मुकुट जुगत जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार
0: ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बानी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी
1: सुख मनी सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ अठ श्लोक
0: उर धारै जो अंतर नाम सर्व मैं पेखै भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार है नानक हो अपारस सगल निस्तार है सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपति
1: मिथ्या नाही रसना परस मन में पीत निरंजन दर्श
0: पर तेरे रूप ना पीख है नेत्र साध की टहल संत संग हेत
1: न सुने काहु की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद बिख्या पर हर है मन की बासना मन ते टर है
1: इंद्री जित पाई दोख ते रहत नानक कोट मदे को ऐसा अपरस
0: वैष्णो सोजे सुपर सुपर सन विष्णु की माया ते हुए भिन्न
1: कर्म करत हुए ने कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहु फल की इच्छा नहीं बाछा है केवल पात कीर्तन संग राचा है
1: मंत्र अनंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ है अवरह नाम जपावे नानक हो वैष्णो परमगत पावे
1: भगवती भगवंत भक्त का रंग सगल त्याग है दुष्ट का संग
0: मंते बिनसै सगला भरम कर पूजा सगल पार ब्रह्म
1: सात संग पापा मल खोवे तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नितनीत मंता नरपै विष्णु प्रीत
1: हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत को पावे
0: सुपंडित जो मन पर बुद्ध है राम नाम आत्म सुध है
1: राम नाम सारस पीवे उस पंडित के उपदेश जग जीवे
0: हर की कथा हृदय बसावे सुपंडित फिर जो न आवे
1: वेद प्राण सिमरत बुझे मूल सुख मैं जाने स्थूल
0: चौवर ना को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा आदेश
1: बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर नाम जपे को नाम
0: जो जो जपे तिसकी गाथ होए साध संग पावे जन कोए
1: कर कृपा अंतर उधारे पशु प्रेत मुक्त पाथर को तारे
0: सर्व रोग औखद नाम कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: आहो जुगत किते ना पाई है धर्म नानक तिस मिले जिस लिखिया तुर कर्म
0: जिस कै मन पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत रामदास
1: आत्म नाम तिस नदरी आया दास संतर भाय तिन पाया
0: सदा नित नित हर जान सो दास दरगह प्रवान
1: अपने दास को आप कृपा करे तिस दास को सब सो जी पर है
0: सगल संग आत्म उदास ऐसी जुगत नानक रामदास
1: रब की आ गया तुम हितावे जीवन मुक्त सो कहावे
0: ऐसा हरक तैसा सोग सदा अनंत है नहीं बियोग
1: ऐसा स्वन तैसी उसमाटी तैसा अमृत तैसी बिखाटी
0: तैसा मन तैसा अभिमान तैसा रंग तैसा राजान
1: जो वर्ताए साई जुगत नानक ओ परख कहिया जीवन मुक्त
0: पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित का राखे तैसा तिनाओ
1: आपे कन करावन जोग प्रभावे सुई फन होग
0: असरे आप हुए अंत रंग लखिन जाहे पार ब्रह्म के रंग
1: जैसी मत दी तैसा प्रगास पार ब्रह्म करता अवनाश
0: सदा सदा सदा दयाल सिमर सिमर नानक भय निहाल
1: सुख सुख अमृत पव नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ नौ श्लोक
0: उस्तत करे अनेक जन अंत न पारा वार नानक रचना प्रभ रची बहु विद अनक प्रकार सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: कई कोट होए पुजारी कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट भय तीर्थ वासी कई कोट मन पर महदासी
1: कई कोट वेद के श्रोते कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान धार है कई कोट कब का विचार है
1: कई कोट नपत नाम ते आवै नानक करते का अंत न पावे
0: कई कोट भय अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी
1: कई कोट कृपन कठोर कई कोट अभिग आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है
1: कई कोट माया सुरमा है कई कोट परदेश भरमा है
0: जित जित लाभो तित तित लगना नानक करते की जाने करता रचना
1: कई कोट से जती जोगी कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प पाए कई कोट पाथर बिरखन पजाए
1: कई कोट पौन पानी बैसंतर कई कोट देश भूमंडल
0: कई कोट ससिर सूर नखत्र कई कोट देव दानविंद्र सिर छत्र
1: सुमदरी अपने सुतार है नानक जिस जिस पावे तिस तिस निस्तार है
0: कई कोट राजस्ताम सातक कई कोट वेद पुराण सिमर तर शास्त्र
1: कई कोट किए रतन समुंद कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चरजीवे कई कोट गिरी मेर स्वर्ण थी
1: कई कोट जाके न प्रसाच कई कोट भूत पे सुकर मिर्गा
0: सब ते नेरा सब होते दूर नारक आप लिप्त रहा भरपूर
1: कई कोट पाताल के वासी कई कोट नर्क स्वर्ग निवासी
0: कई कोट जन्म है जीव मर है कई कोट बहु जूनी फिर है
1: कई कोट बैठती खाए कई कोट खा ले तक पाए
0: कई कोट किए धनवंत कई कोट कोट माया मह चिंत
1: जय जय भाणा तै तै राखे नानक सब किश प्रभ के हाथे
0: कई कोट भय बैरागी राम नाम संग तिन लिव लागी
1: कई कोट प्रभ को खोजन ते आत्म मैं पार ब्रह्म नहंते
0: कई कोट दर्शन प्राप्त आस तिन को मिलियो प्रभ विनाश
1: कई कोट मा गए सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग
0: जिनको हे आप सो प्रसन्न नानक ते जन सदा धन धन
1: कई कोट खाणी अरखंड कई कोट आकाश ब्रह्मंड
0: कई कोट होए अवतार कई ज्योत कीनो विस्तार
1: कई बार पसरो पासार सदा सदा एक अहंकार
0: कई कोट कीने बहु भांत प्रभ ते होए ब्रह्मा हे समात
1: ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोए
0: कई कोट पार ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म प्रगास
1: कई कोट तत के बेते सदा निहारे इको नेत्रे
0: कई कोट नाम रस पीवै अमर भय सद सद ही जीवै
1: कई कोट नाम गुण गावै आत्म रस सहि समावै
0: अपने जन को सास सास समारे नानक कोई परमेश्वर के प्यारे
1: सुखमनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ दस श्लोक
0: कारण कारण प्रभ एक है दूसर नाही कोए नानक तिस बलिहार नै जल थल महील सोए सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: करन करावन करने जोग जो तिस भावै सोई होग
0: किन मैं थापो थाप नहारा अंत नहीं किछ पारा वारा
1: हुक्मै तार अतर रहावै हुक्मै उपजै हुक्म समावै
0: हुक्मै ऊंच नीच व्यवहार हुक्मै अनक रंग प्रकार
1: कर कर देखे अपनी वडियाई नानक सब में रहा समाई
0: प्रभावै मन गत पावै प्रभावै ता पाथर त्रावै
1: प्रभावै बिन सास तिराखै प्रभावै ता हर गुण पाखै
0: प्रभावै ता पथ तुधारै आप करै आपन बिचारै
1: दोहसरिया का स्वामी खिलै विकसै अंतर जामी
0: जो पावै सो कार करावै नानक दृष्टि अवर न आवै
1: कहो मानक ते क्या होया वै जो तिस पावै सोई करावै
0: इसका हाथ होए ता सब किछ ले जो तिस पावै सोई करे
1: अनजानत बिख्या मैं रचै जे जानत आपन आप बचै
0: भरमे भूला दह दिसतावै निमुख माहे चार कुंट फिरावै
1: कर कृपा जिस अपनी भगत दे नानक ते जन नाम मिले
0: खिन मह नीच कीट को राज पार ब्रह्म गरीब निवाज
1: जाका दिष्ट कछु न आवै तिस तत्काल दस पलटावै
0: जाको अपनी करै बख्शीस ताका लेखा नागन जगदीश
1: जियो पिंड सब तिसकी रास घट घट पूर्ण ब्रह्म प्रगास
0: अपनी बनत आप बनाई नानक जीवै देख बडाई
1: इसका बल नाई इस हाथ कर्म करम सर्व को नाथ
0: आज्ञाकारी बपरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो
1: कबहु ऊंच नीच में बसै कबहु शोक हरख रंग हसै
0: कबहु निंद चिंद व्यवहार कबहु उब काश पयाल
1: कबहु बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिलावन हार
0: कबहु नित करै बो पांत कबहु सोई रहै दिन रात
1: कबहु महाक्रोध विकराल कबहु सर्व कियो त्रवाल
0: कबहु होए बह बड़ राजा कबहु पे खारी नीच का साजा
1: कबहु अप कीर्त में आवै कबहु भला भला कहावै
0: ज्यों प्रभ राखै तिवी रहै गुर प्रसाद नानक सच कहै
1: कबहु होए पंडित करे बख्यान कबहु मोहन धारी लावै ध्यान
0: कबहु तट तीर्थ स्नान कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान
1: कबहु कीट हस पतंग होए जिया अनक जोन भरमै भरमिया
0: नाना रूप जो स्वांगी दिखावै ज्यों प्रभ भावै तिवै नचावै
1: ज्यों तिस भावै सोई होए नानक दूजा अवर न कोए
0: कबहु साध संगत ए हो पावै उस स्थान ते बहुर न आवै
1: अंतर होए ज्ञान प्रगास उस स्थान का नहीं विनाश
0: मंता नामर ते करंग सदा विसै पार ब्रह्म कै संग
1: ज्यों जल मैं जल आए खटाना त्यों ज्योति संग ज्योत समाना
0: मिट गए गमन पाए विश्राम नानक प्रभ कै सद कुर्बान
1: सुख मनि सुख अमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम अठ ग्यारह श्लोक
0: सुखी बसै मसकीनिया आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया नानक गर्भ गले सत नाम श्री वाहे गुरु अष्टपदी
1: जिसके अंतर राज अभिमान सुनर पाती हो स्वान
0: जो जाने मैं जो बनवंत सो होवत बिष्टा का जंत
1: आपस को कर्मंत कहावै जन्म मरे बो जोन भरमावै
0: धन भूमगा जो करे गुमान सो मूर्ख अंधा अज्ञान
1: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावै नानक इहा मुक्त आगे सुख पावै
0: धनवंता होए कर गुर बावै तरन समान कछ संग न जावै
1: बहु लश्कर मान को ऊपर करे आसु पल पीतरता का होए बिना
0: सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं होए जाए पसमंत
1: किसे ना बदे आप अहंकारी तरम राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जाका मिटै बिमान सो जान नानक दर गै परवान
1: कोट कर्म करे हो तारे श्रम पावै सगले बिरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार नरक सुर्ग फिर अवतार
1: अनक यत्न करा तुम निद्रवै हर दर गै को कैसे गवै
0: आपस को जो भला कहावै तिसह भलाई निकट न आवै
1: सर्व किरिंजा का मन होए कहो नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझ ते कछ होए तब इस को सुख नाही कोए
1: जावे जाने मैं कुछ करता तब लग गर्भ जोन मैं फिर
0: जब तारे को बैरी

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजास, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: यार तू इतने नीचे थी, आके पक्का भी हो गया? की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जब हम बहुत कुछ अपने जीवन के बारे में एक नई नजर से देखने लगते हैं तो उसे हम इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं, और इन दिनों हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो कुछ इस श्रृंखला में हमें समझ में आ रहा है, नए बिलीफ सिस्टम्स बन रहे हैं, उन्हें हम शामिल करते जाएं अपनी डे टू डे थिंकिंग में। और ऐसे में स्ट्रेस से जुड़े कई ऐसे बिलीफ सिस्टम्स थे, हमारे ऐसे स्ट्रांग थॉट्स थे जिन पर हमारा जीवन आधारित था कि स्ट्रेस बहुत जरूरी है, या स्ट्रेस जो है मेरी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए या मेरे सबॉर्डिनेट्स की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, मेरे बच्चों की परफॉर्मेंस के लिए मुझे देना ही पड़ेगा उनको बदले, क्योंकि वो देख लिया हमने कि वो नहीं काम कर रहे थे। इनफैक्ट उसी के कारण जो इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो अगर हम उस बिलीफ सिस्टम को चेंज करते हैं तो जो जिंदगी में मुश्किलें आ रही थी, जो डिप्लीशन हो रहा था, वो बच सकता है। आगे और जानते हैं कि किस तरह से स्ट्रेस के जो बिलीफ सिस्टम्स हैं हमारे पास, वो उन्हें हम नॉर्मल बांधकर अपने जीवन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: तो सिस्टर शिवानी, अभी तक जो हमने बातें की, स्ट्रेस की कई ऐसी सारी मिथ सामने आई है कि जिस बिलीफ सिस्टम पर हम, मतलब उस पे हमारा सब कुछ जुड़ा हुआ था, और अगर अब मेरे को समझ में आ रहा है कि जो हमने पिछली बार बात की थी जो शुरू में ही, कि बिलीफ सिस्टम कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं मेरी पूरी डेस्टिनी के लिए, मैं मतलब उसी पर काम करती जा रही होती हूँ।
1: इसीलिए तो बिलीफ सिस्टम्स को चेक करना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम मेरी पूरी लाइफ के ऊपर कितना इन्फ्लुएंस कर सकता है। सो आई जस्ट कांट अफोर्ड टू हैव रॉन्ग बिलीफ सिस्टम्स। एंड रॉन्ग और राइट भी हम कहते हैं ना, कौन बताएगा रॉन्ग और राइट। एनी बिलीफ सिस्टम जो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है वो मेरे लिए रॉन्ग है। वी आर नॉट गोइंग टू जनरलाइज इट एंड से कि ये सबके लिए रॉन्ग है। ये बिलीफ सिस्टम मेरे लिए रॉन्ग है। टेंशन नेचुरल है, ये बिलीफ पकड़ा तो टेंशन जब क्रिएट हुई अंदर उसको स्वीकार करते गए, टेंशन क्रिएट होती गई,
0: पर काम
1: नहीं किया तो फिर वो मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। फिर वो मेरे आसपास जो है बच्चे परिवार उनके भी जीवन का हिस्सा बनता गया। तो हाउ कैन आई कॉल दैट दिस इज अ गुड और दिस इज अ राइट बिलीफ सिस्टम। आई नीड टू एक्सपेरिमेंट। ये टेंशन अननेचुरल है, पीस रिलैक्सेशन स्टेबिलिटी ये नेचुरल है। वैसे भी वो मुझे कंफर्टेबल फील कराता, चिंता तो मुझे हमेशा अप एंड डाउन लेके जाता।
0: अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो ये है कि थोड़ी थोड़ी सी थोड़ी चिंता, थोड़ी टेंशन, क्योंकि ज्यादा होते ही वो हमारे को पता चल जाता है कि वो हम बिल्कुल नहीं बर्दाश्त कर पा रहे हैं। तो हमने क्या किया हुआ है, थोड़ी सी टेंशन, थोड़ी सी, थोड़ा सा स्ट्रेस, थोड़ा सा एंगर, थोड़ा सा वरी।
1: सी, अब क्या होगा, थोड़ी थोड़ी, जैसे अपने शरीर को लेते तो हमने कहा हेल्थ नेचुरल है। हमने कभी आपने कहा अपने आप को कि थोड़ा बीमार होना नेचुरल है? नहीं। तो हेल्थ, परफेक्ट हेल्थ नेचुरल है, ये लक्ष्य लेकर आप हम अपने शरीर का ध्यान रखते तो वो हमेशा ठीक ही रहता, कभी कभी फिर थोड़ा सा हो जाता। लेकिन जब थोड़ा सा भी बीमार पड़ता तो हम तुरंत अपने आप को कहते हेल्थ नेचुरल है, ये कहाँ तकलीफ हो रही है, इसका जल्दी से चेकअप कराओ और इसको ठीक करो। लेकिन अगर हम अपने उस बिलीफ को चेंज करें और कहें थोड़ा थोड़ा बीमार होना तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा बीमार होना नेचुरल है।
0: लेकिन ये मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आज के वक्त में हम ये कहने लग गए हैं कि आज जिस दौर में हम रह रहे हैं, क्योंकि हम इतने टेंशन में होते हैं, इतने स्ट्रेस में होते हैं, तो थोड़ा सा सर में दर्द, थोड़ा सा पेट में दर्द, थोड़ा सा कुछ खराब होना नेचुरल, ब्लड प्रेशर भी है।
1: एंड देन व्हाट इज योर डेस्टिनी विद दैट, कि वो थोड़ा थोड़ा आपके साथ ही चलता है। तो जो सर दर्द नेचुरल नहीं है उसको स्वीकार कर लिया,
0: तो
1: नेचुरल
0: नहीं,
1: बड़ी बड़ी चीजें तो खैर जो हो अगर हो, लेकिन सर दर्द के साथ भी क्यों जीवन में चले, बैक एक के साथ भी क्यों चले, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। Now why we said it's natural? क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें
0: पता ही नहीं था
1: कि कैसे मेहनत करनी है, जस्ट बिकॉज वी सेड इट्स नेचुरल। नाउ व्हाई डू वी से इट्स नेचुरल, क्योंकि हमने इलाज ट्राई किया उसका कोई इलाज नहीं पता चला, क्योंकि डॉक्टर ने कहा स्कैन हो गया, MRI भी हो जाते सर दर्द के लिए, सब कुछ हो गया, आपका तो सब कुछ ठीक है। नाउ व्हाई वी सेड इट्स नेचुरल, क्योंकि हमें उसका इलाज नहीं मिला, क्योंकि उसका इलाज था हमारी वे ऑफ थिंकिंग में, और वहां हम मेहनत नहीं करते या वहां हमें पता नहीं कि कैसे मेहनत करनी है। तो जैसे हमने टेंशन को स्वीकार किया तो टेंशन का जो बाय प्रोडक्ट है वो है हेडेक. टेंशन का बाय प्रोडक्ट है ये बैकएक, ये अल्सर्स. तो फिर क्योंकि उनका कोई यू नो फिजिकल लेवल पर इलाज नहीं था, उनका इलाज ही था कि अपने थॉट्स को चेंज करना. वो हमने कहा वो तो कैसे होंगी क्योंकि पेनफुल थॉट्स तो नेचुरल है. तो अगर दर्द वाली थॉट्स, गुस्से वाली थॉट्स नेचुरल है तो उनका जो आफ्टर इफेक्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो भी तो नेचुरल ही लेना पड़ेगा ना मुझे. तब मैंने हेडेक को, ये बैकएक को, इनको भी नेचुरल ही ले लिया. एंड नेचुरल नेचुरल बोलते बोलते आई एम कैरिंग ऑल दिस पेन इन माई लाइफ, इमोशनल पेन ऑल्सो, फिजिकल पेन ऑल्सो. फिर ये जो पेन था ये मेरे रिलेशनशिप्स में दिखाई देने लगा. आएगा ही, मैं फिजिकली दर्द में हूँ, इमोशनली दर्द में हूँ, व्हाट डू आई गिव इन टू माई रिलेशनशिप्स. फिर मेरे रिलेशनशिप्स में थोड़ा थोड़ा टक्कर, थोड़ा थोड़ा स्वभाव संस्कार ये होने लगा, एक दूसरे से हम थोड़ा सा खिंचे रहने लगे. फिर उसको भी हमने क्या कहना शुरू किया,
0: नेचुरल है. यस, रिश्तों में खिंचाव तो मतलब इतनी इतनी तो बात चलो ठीक है ना, इतना तो होता ही है.
1: रिश्तों में खिंचाव नेचुरल है, एक दूसरे के साथ झगड़ा करना, ये सब होना, ये तो नेचुरल है. अब हमारी
0: हो जाता है, नेचुरल है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो.
1: तो नेचुरल नेचुरल करते करते फिर कितनी सारी अननेचुरल चीजों को
0: हमने नेचुरल की पदवी दे दी.
1: क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट चीज थी उसको ही हमने कहा ये थोड़ा थोड़ा नेचुरल है.
0: एक्चुअली हमारे पास इलाज ही नहीं थे, सच्ची, वेरी ट्रू. यू नो हमने अगर थोड़ा सा भी कोशिश भी की हमें समझ में ही नहीं आया क्या करें, तो हम फिर आगे तो बढ़ना ही है तो आगे बढ़ते.
1: और टेंशन थोड़ा थोड़ा नेचुरल है ये कहने पर थोड़े की डेफिनेशन या थोड़े का पैरामीटर कौन फिक्स करेगा कि थोड़ा क्या? क्योंकि हमारी टेंशन सिचुएशन पर डिपेंडेंट है. आज हमने कहा सिचुएशंस स्ट्रेस क्रिएट करती, तो आज छोटी मोटी सिचुएशंस है, हमने कहा थोड़ा बहुत स्ट्रेस ये तो नेचुरल है. लेकिन क्या कल सिचुएशन मुझे बताकर आएगी? टुमारो कुड बी अ बिगर सिचुएशन. कल हो सकता फाइनेंशियल क्राइसिस हिट्स में, कल हो सकता मेरे घर पे कुछ हो जाए, बिजनेस अप एंड डाउन हो जाए, नेचुरल कलामिटी हिट. आई मीन इट्स अनप्रेडिक्टेबल जिन समय में हम चल रहे हैं. तब क्या करेंगे? तब क्या हम अपने टेंशन पर काम कर पाएंगे कि वो थोड़े वाले पर ही रखना है, टेंशन को बढ़ाना नहीं है? विल आई बी एबल टू, लेट्स से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आज मेरा टेंशन नंबर 2 पर है, लेकिन कल परिस्थिति बहुत ज्यादा बढ़ गई, विल आई बी एबल टू कीप इट एट नंबर 2? इट विल इमीडिएटली गो अप. एंड तब हम कहें क्या करें, परिस्थिति ऐसी थी,
0: ये तो होना ही था,
1: होना ही था.
0: अच्छा एक और बात, बहुत से लोग कहते हैं, इस पर भी मैं जानना चाहती हूँ कि ये जो व्यक्ति है ना, ये छोटी छोटी बातों पे तो बहुत परेशान हो जाते हैं, छोटी छोटी चीजें जो इन्हें इरिटेट करती है, लेकिन कोई बड़ी बात आ जाती है ना अगर, तब स्टेबल रहते हैं. सो व्हाट इज दैट पर्सनैलिटी?
1: इट इज अ पर्सनैलिटी जो सिचुएशंस को, जब सिचुएशन बड़ी आ जाती है तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रियलाइज कर लेते हैं. एक होता है छोटे छोटे लेवल्स पर इरिटेट होना, यू नो ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ. एक होता है बड़ी जब सिचुएशन आती है तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रियलाइजेशन है कि इस सिचुएशन को तो मैंने फेस करना है. इट इज नॉट नेसेसरी कि वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन उनका फोकस बहुत कंप्लीट है कि मुझे सिचुएशन को क्रॉस करना है, ये मेरी जिम्मेवारी है.
0: अच्छा, जो बाकी छोटी छोटी चीजें जो थी उनमें नहीं,
1: उनमें तो वो सिचुएशन नहीं थी ना, उनमें उन्होंने इरिटेशन को अपना नेचुरल बिहेवियर कर लिया. अब बड़ा कुछ ट्रेजेडी हिट कर गई फैमिली में, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरे परिवार को, पूरी कंपनी को, सबको इसके साथ मैंने लेकर जाना है. ऐसे समय पर वो अपनी स्ट्रेस को अपने साथ अंदर रख लेते हैं, सिचुएशन को क्रॉस करते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल कि विद स्टेबिलिटी. अगर वो छोटी चीज में स्टेबल नहीं थे तो बड़ी में स्टेबल होंगे, वो नहीं है. लेकिन सिचुएशन को क्रॉस करना है उस समय वो उसको अंदर रख लेते हैं. नॉट यू नो जैसे अगर घर में सारे टेंशन में है तो आई इमिजिएटली से एटलीस्ट मुझे ऐसा कुछ नहीं कहना है जिससे ये और भी टेंशन में आ जाए, तो मैं तुरंत अपना बिहेवियर, अपने वर्ड्स को बहुत ध्यान से करता हूँ, बट नॉट नेसेसरी थॉट्स को. वो फिर उनको खुद को ही पता है,
0: अंदर अंदर
1: वो उनको खुद पता है. और कई लोगों के साथ ऐसा भी होता कि सिचुएशन को तो वो क्रॉस कर लेते, जैसे फॉर एग्जांपल अगर परिवार में देर इज अ डेथ इन द फैमिली, सब लोग बहुत अपसेट हैं, बहुत रो रहे हैं, तो एक जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता, नहीं हमने इसको क्रॉस करना है, तो वो एकदम अपने वो दर्द को अंदर ही दबा देते हैं, पूरा वो जो है सिचुएशन उसको क्रॉस करते. लेकिन कई बार उसके बाद वो
0: ब्रेकडाउन
1: हो जाते हैं. एंड यू नो एवरीथिंग, तो इसको हम कहेंगे नॉट के स्ट्रेस क्रिएट नहीं किया, लेकिन उसको अंदर
0: तो ब्रेकडाउन जो है वो तो और खराब हो जाता है,
1: तब वो फिर ब्रेकडाउन हो जाता है। तो हम जिस लेवल की बात करें कि वो अंदर क्रिएट ही ना हो, हम छोटी छोटी बातों में पहले ट्राई करें कि हमें स्टेबिलिटी से क्रॉस करना, फिर बड़े वाले में एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, बड़े वाले को नेचुरली क्रॉस कर जाएंगे, लेकिन स्टार्ट छोटे छोटे वाले सिचुएशन से करना पड़ेगा। कई बार हम समझते कि स्ट्रेस जो है वो एक एलिमेंट, एक बीमारी की तरह है, कि क्या एक डॉक्टर ही इसका इलाज कर सकते हैं,
0: तो हो ही नहीं पाएगा।
1: हाँ, सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ पैरामीटर अफेक्टेड है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यस, ये बीमारी जैसा तो है लेकिन फिजिकल नहीं है, तो इसके लिए मुझे जाकर अपनी पल्स या अपनी हार्ट बीट या ये सब चेकअप नहीं करवाना है डॉक्टर से, क्योंकि ये बीमारी को सिर्फ और सिर्फ मैं ही जानता हूँ, पेशेंट भी मैं तो डॉक्टर भी मैं ही हूँ। जैसे थोड़ा सा भी हमें अनकंफर्टेबल लगता, सो वी गो एंड चेक आवर पल्स ना, और पल्स देखते ही हमें पता चल जाता डॉक्टर को कि कुछ सिमिलरली रोज सुबह उठकर अपने थॉट्स की पल्स को चेक करो, कैसी वाली है, बीट कैसी है, नेचुरल है, ऐसे तो नहीं कि बहुत फास्ट फास्ट चल रही है। अब हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, हम तुरंत कहते हैं कुछ प्रॉब्लम है, हम ये नहीं रियलाइज करते ये हार्ट बीट फास्ट हुई क्यों, इससे पहले यहाँ कुछ बहुत फास्ट चल रहा है और डेफिनेटली बहुत नेगेटिव क्वालिटी का चल रहा है जिसकी वजह से ये हार्ट बीट फास्ट हुई, ये पल्स रेट फास्ट हुई। तो जब वो स्ट्रेस हमारे फिजिकल के ऊपर इन्फ्लुएंस कर जाता, तब हमें लगता कि अब इसका इलाज करवाना जरूरी है। अगर उसको उसी लेवल पर ठीक कर दिया होता तो फिर वो फिजिकल लेवल पर आता ही नहीं। जो हमने पिछली बार बात की कि स्ट्रेस फॉर परफॉर्मेंस, स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को तो अफेक्ट करता ही करता, लेकिन सबसे पहले वो मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर पर इफेक्ट कर जाता, मेरी मेमोरी पावर पर इफेक्ट करता, मेरी निर्णय शक्ति। कभी भी अगर आप स्ट्रेस के अंडर है, डोंट टेक अ डिसीजन, क्योंकि वो डिसीशन हो सकता है कि राइट ना हो, क्योंकि तनाव के अंदर यहाँ बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता और स्ट्रेस हमारी फिजिकल इस कॉस्ट्यूम पर, इस शरीर पर बहुत ज्यादा असर करता है। अगर किसी के अंदर चिंता करने की आदत है, वरी वरी वाले थॉट्स, तो फिर इनडाइजेशन, अल्सर, ये उनके लिए बहुत कॉमन होता। एंगर है तो कैंसर, यू नो रिजेंटमेंट पकड़ कर रखा है किसी के प्रति, तो वो क्रिएट हो जाता। बहुत दर्द वाले थॉट्स हैं, हार्ट पे इफेक्ट होता, ब्लॉकेज हो जाती क्योंकि यहाँ कोई ना कोई ब्लॉकेज करके रखा है। सो वो हमें चेक करना है कि माइंड के लेवल पर अपने आप को ब्लॉकेज को क्लीन करते जाएं, ताकि फिजिकल लेवल पर वो क्रिएट ही नहीं होना
0: चाहिए। टेक यू आउट ऑफ दैट स्ट्रेस, और उसके बाद आपके आप फ्रेश होकर एक बार फिर से जिंदगी को, मतलब जिस भी सिचुएशन में थे वो शुरू कर सकते हैं। डज इट रियली हेल्प?
1: टेम्पररी यस, क्योंकि अगर आप एक पर्टिकुलर एनवायरमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे वर्क पे हैं, आपके एग्जाम्स हैं, तो आप बहुत ज्यादा उस स्ट्रेस से गुजरे, तो आपको लगता है एग्जाम के बाद लेट्स टेक अ हॉलीडे, या बहुत ज्यादा तनाव है, चलो ऑफिस से तो थोड़े दिन छुट्टी लेकर कहीं चले जाते, लेकिन दैट्स नॉट द सोल्यूशन। इट इज अ टेम्पररी, इट्स अ रिलैक्सेशन जिसमें आप अपनी नॉर्मल रूटीन से कुछ डिफरेंट कर रहे हैं। वो वैसे भी अच्छा लगता है कि कुछ भी आप जो रोज करते आए हैं उससे आप डिफरेंट कर लेते हैं। जैसे ही आप कुछ डिफरेंट करने जाते तो आपकी थॉट्स थोड़ी सी उस तरफ से हटकर दूसरी तरफ चली जाती। लेकिन कई बार तो लोग अपने तनाव को अपने साथ हॉलीडे पर भी कैरी कर लेते हैं। अच्छा, वो नहीं भी किया लेकिन जब वापस आएंगे तो फिर भी तो वही सिचुएशन है। तो ठीक है, मैंने उसको स्ट्रेस को फिनिश नहीं किया, मैंने उसको पोस्टपोन कर दिया कि मैं 15 दिन के लिए कहीं और जाकर आता हूँ, मे बी आई विल गेट अ डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग। यस, तो रेस्ट हमारी बॉडी को तो रेस्ट देता, लेकिन माइंड को रेस्ट देने के लिए मुझे 15 दिन का हॉलीडे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सारा दिन बीच बीच में एक मिनट इसको रेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि ये माइंड ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम ऐसे आप काम करो फिर 15 दिन, क्योंकि 15 दिन आप बॉडी को रेस्ट दे रहे हो, माइंड तो फिर भी काम कर रहा है। इम्पोर्टेंट ये है वो क्या काम कर रहा है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट कर रहा है। हॉलीडे पे जाना या रेस्टोरेंट जाना, पार्टी करना, दिस इज ऑल ओके, ये एंटरटेनमेंट है, दिस इज अ चेंज, बट इट इज नॉट फिनिशिंग ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट सोल्यूशन फॉर स्ट्रेस। सोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस हमारी वे ऑफ थिंकिंग में है। और जब आप अपने वर्क को, अपनी पढ़ाई को, अपनी नॉर्मल रूटीन को एंजॉय करना शुरू कर देते, तो हॉलीडे का कॉन्सेप्ट, आई मीन आई डोंट रिमेम्बर व्हेन आई वेंट लास्ट फॉर अ हॉलीडे, आई डोंट रिमेम्बर, बिकॉज हॉलीडे की फीलिंग
2: बिकम्स अ हॉलीडे,
1: हॉलीडे की फीलिंग कब आती है, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक, आई वॉन्ट टू टेक अ ब्रेक कब होगा, जब मैं यहां अभी I am not, you know, happy. I need to take a break from this. I don't know when it happened last. क्योंकि अगर आप हर रोज को enjoy कर रहे हैं, हर रोज हल्के हैं, तो break लेकर क्या करेंगे? यही सब कितना, you know, you enjoy your work. आप जो कर रहे हो, उसी के अंदर अगर आप right thought से उसको कर रहे हो, you're enjoying each day. You don't need to take a break for that than anything.
2: Very true. Somewhere वही stress को relieve करने के लिए हमने सोचा कि holiday या break लेते हैं, लेकिन वो break से आने के बाद भी स्ट्रेस भी वही रहा, वो फैक्टर्स वही रहे।
1: तो और स्ट्रेस को लेकर जो एक और बहुत बड़ा बिलीफ है वो है कि मेरे स्ट्रेस का कारण बाहर है, मेरे तनाव, क्यों हमने जो दूसरा बिलीफ पकड़ा कि तनाव नेचुरल है, टेंशन नेचुरल है, क्योंकि टेंशन के कारण बाहर थे, टेंशन के कारण थे एग्जाम्स, टेंशन का कारण है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
2: मदर इन लॉ, यू नो, सच अ मेजर फैक्टर।
1: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला है सिलेबस, टेंशन का कारण है मेरा बॉस, टेंशन का कारण सोसाइटी, टेंशन का कारण जो पूरा सोशल स्ट्रक्चर, गवर्नमेंट, रोड्स ठीक से नहीं बनाते,
2: मदर इन लॉ, यू नो, सच अ मेजर फैक्टर।
1: तो जैसे ही मैंने इन सब चीजों को, इन सब बातों को मेरे टेंशन का कारण बोला, फिर मुझे सेकंड बात ये भी पता है कि ये मेरे अनुसार तो चलने नहीं वाले, ये होने नहीं वाला। फिर मैंने कहा मेरी टेंशन का कारण आप चेंज होते नहीं हो, तो फिर मुझे टेंशन में तो रहना ही पड़ेगा। दैट इज हाउ आई एक्सेप्टेड माय टेंशन एज नेचुरल,
2: यू नो, कि सिचुएशन तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो अब तो ऐसे जीना पड़ेगा, यू नो, अमेजिंग, यस, दिस इज व्हाट वी एक्चुअली।
1: तब हमने कहा कि तब इसलिए अगर आप किसी से भी पूछो टेंशन होती है आपको, तो कहे समय ऐसा चल रहा है, समाज ही ऐसा है, क्यों? क्योंकि मेरी टेंशन का कारण कौन है? वो समाज, एंड समाज मीन्स एवरीवन अराउंड।
2: सीधा वो यही बात है जवाब कि आपको नहीं होते, कोई ऐसी चीज है, यू नो, कोई ऐसी जगह है जहां से टेंशन ना हो, सो मेनी टाइम्स पीपल से
1: टेंशन से भागने वाली कोई जगह है। इफ यू वांट टू लिबरेट योरसेल्फ इस बीमारी से, सिर्फ इस एक बिलीफ सिस्टम को चेंज कर लो, मोस्ट ऑफ द वर्क इज डन। नो वन एंड नथिंग, नो वन, एंड जब हम कहते हैं नो वन मीन्स नो वन एंड नो सिचुएशन इज द कॉज ऑफ My stress. These are situations, these are people जो बाहर से आते, stress is my response to the situation. हाँ परिस्थिति challenging है, लेकिन आपको नहीं पता क्या हुआ। हाँ परिस्थिति बहुत challenging है, हमने कुछ दिन पहले ही देखा, death of a child in my family. अब इससे ज्यादा बड़ी परिस्थिति कोई नहीं हो सकती शायद किसी के लिए, लेकिन फिर भी वो बाहर है, वो परिस्थिति यहाँ है, उस परिस्थिति के response में मुझे जो थॉट्स क्रिएट करने वो यहाँ है, ये मेरे हाथ में है, एक ही चीज है जो मेरे हाथ में है और कुछ भी मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो थॉट्स आई क्रिएट। लेकिन उसी को मैंने सोचा कि यही मेरे हाथ में नहीं है, तो देन आई वेंट ऑल आउट ऑफ कंट्रोल।
2: अमेजिंग, यस, यू नो,
1: सो द नेक्स्ट टाइम यू से मदर इन लॉ, द नेक्स्ट टाइम यू से चिल्ड्रन, एग्जाम, सिलेबस, जिससे ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इनको रिस्पॉन्ड कैसे करना ये मेरे हाथ में है, वो स्ट्रेस नहीं क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा स्ट्रेस यहाँ क्रिएट होता, यहाँ कोई घुस नहीं सकता। स्ट्रेस है मेरी फियरफुल थॉट्स, स्ट्रेस है मेरी चिंता वाली थॉट्स, परिस्थिति उसी परिस्थिति में, और इसीलिए हम देखते एक ही बॉस है लेकिन अलग अलग लोग उनके अंडर काम करते हुए डिफरेंट लेवल्स ऑफ स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हर एक का इनर स्ट्रेंथ अलग अलग है। तो अब हमें समझ में आता कि स्ट्रेस प्रेशर पे नहीं डिपेंडेंट, स्ट्रेस इनर स्ट्रेंथ पर डिपेंडेंट है, और जो जितना अपने इनर स्ट्रेंथ अपने रिस्पॉन्स पर ध्यान देगा उसको स्ट्रेस नहीं होगा, और जो जितना ब्लेम करता जाएगा औरों को वो विक्टिम की तरह अपनी जीवन जीता जाएगा। मैं क्या करूं, मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है, मेरा हस्बैंड ऐसा है या मेरे साथ ऐसा हो गया या उन्होंने मेरा इतना, इस तरह के थॉट्स क्रिएट करते जाएंगे, वी क्रिएटिंग अ डेस्टिनी ऑफ टेंशन ऑफ स्ट्रेस एंड देयरफॉर ऑफ पेन। सो वन बिलीफ सिस्टम शिफ्ट कि स्ट्रेस मेरी क्रिएशन है, ये किसी परिस्थिति या व्यक्ति से नहीं आती है, I create it and I can actually create it even if nothing is happening outside. सब कुछ ठीक भी होगा ना, कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे सब ठीक चल रहा है बाहर, nothing is wrong, तो भी उनको टेंशन है
2: कुछ कुछ बाहर का सोच के या कुछ कुछ और।
1: कई लोग कहते हैं कि इस बात की चिंता है कि कोई चिंता क्यों नहीं है आज,
2: ये क्या हो गया
1: है, सब कुछ ठीक ठाक कैसे चल रहा है,
2: गड़बड़ होगा ही होगा।
1: सो देयर यू हैव गॉन एंड क्रिएटेड अ नेगेटिव थॉट इन रिस्पॉन्स टू सब कुछ ठीक है, तो इसीलिए मुझे डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत तो नहीं होने वाला इसके बाद, एंड आपने गलत क्रिएट कर दिया ऑलरेडी उसी टाइम। जैसे ही हम उंगली ऐसे करते हैं, यू नो दे आर क्रिएटिंग, नहीं वो तो ठीक है वो मुझे मालूम है, दैट्स वेरी कॉमन कि चार उंगली मेरी तरफ है, लेकिन जैसे ही हम उंगली बाहर करते माई एनर्जी flows out, I disempower myself, someone else is responsible, totally energy has flown up, jaise hi I do this my energy ka circuit is complete, it's here, I have the power, I can do it, I will do it, that's all. Wo aise hai, wo kaise bhi hai, paristhiti itni kharab hai kaisi bhi hai, fir bhi thought kaun si create karna, ab mujhe sirf ye seekhna hai कि किन किन परिस्थितियों में मुझे कैसी वाली थॉट क्रिएट करनी,
2: मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है या मेरी ट्रेन छूटने वाली है।
1: अच्छा, तो आपकी ट्रेन छूटने वाली है, राइट, अब आप ट्रैफिक में अटके हैं, ना आपकी गाड़ी आगे जा रही ना पीछे हिल रही, आप घड़ी देखते जाएंगे, क्या कर उससे ज्यादा क्या कर सकते हैं आप, ये स्ट्रेस क्रिएट करके या इस तरह से सोच के ट्रेन को रोक सकते हैं,
2: लेकिन वो कैसे मैं,
1: वॉट कैन यू डू, यू ओनली हैव टू सिट देयर,
2: कांट डू एनीथिंग, बट देन इट्स सो नेचुरल,
1: नथिंग यू, इवन देन यू विल ओनली हैव टू टेल योर सेल्फ, होप आई रीच देयर ऑन टाइम, इफ नॉट देन आई विल हैव टू सी नाउ वॉट नेक्स्ट एंड कीप साइलेंट, दैट्स ऑल। इसके ऊपर तो एक भी सेकेंड थॉट चलाने का क्वेश्चन ही नहीं है, क्योंकि जितने थॉट्स आप चलाएंगे, जो आपकी गाड़ी चला रहा होगा या जो आपकी ऑटो चला रहा होगा, आप उसको कहेंगे जल्दी करो ये हो रहा है वो, आप पूरा एक ऐसा एनर्जी लेवल क्रिएट कर देंगे कि पता नहीं शायद कोई और नुकसान ना हो जाए फिर सड़क के ऊपर, यू नो दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इस तरह से बोलने से इट्स, जिसने वो चला रहा है उसको भी पता है कि उसको टाइम पर पहुंचना है, वो अपने बेस्ट चला रहा है, हमें उसको रिलैक्स्ड रहने देना है, ताकि रिलैक्स्ड होगा तो वो बेस्ट चलाएगा।
2: क्योंकि हमारा एक और बिलीफ सिस्टम है कि जब तक मैं स्ट्रेस क्रिएट नहीं करूंगी वो पीक परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा।
1: ट्रेन छूटने वाली है शायद, थॉट क्रिएट करो ट्रेन लेट हो जाए, हैव यू एवर ट्राइड दैट, आई हैव ट्राइड दैट मेनी टाइम्स, एंड डू यू नो समथिंग, इट हैपेंस, द ट्रेन गेट्स लेट, द फ्लाइट गेट्स लेट, जस्ट स्टे स्टेबल एंड से आई हैव टू रीच, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां पहुंचना है, फ्लाइट लेट हो जाएगी आज, एंड इट गेट्स लेट और द ट्रेन गेट्स लेट, सो मेनी टाइम्स वी हैव एक्सपीरियंस,
2: इट्स नॉट दैट आई हैव टू से प्लीज ट्रेन लेट हो जाए, आई जस्ट हैव टू से ट्रेन लेट हो जाएगी
1: एंड हो या नहीं हो, यहां नहीं कुछ भी होना चाहिए, एंड दैट्स सो,
2: एंड देन वी विल थिंक अबाउट इट, अगर ट्रेन लेट होगी तब हम उसके बारे में सोचेंगे,
1: पहले से नहीं, यू नो ये भी एक, अगर नहीं पहुंचे फिर क्या नेक्स्ट,
2: क्या होगा फिर, क्या
1: That is present. That is living in the present.
2: लेकिन फिर वो प्लानिंग, वो फिर हम कहते हैं कि हमें अपने आप के आगे प्लानिंग,
1: आपकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो जाती है उतनी देर में,
2: रियलाइज दैट,
1: आपकी इतनी एनर्जी ड्रेन आउट हो जाती है कि उस मोमेंट पे जो राइट डिसीजन है आप ले ही नहीं पाते, आप स्टेबल रहे स्टेशन पहुंचे, फिर अगर ट्रेन चली गई है देन एट द प्रेजेंट मोमेंट नाउ वॉट नेक्स्ट, पहले सोच के पहले कुछ कर तो नहीं सकते ना, तो बींग इन द प्रेजेंट मीन्स हर मोमेंट वो सोचें जो उस मोमेंट करना है, हमें लगता है पहले ही सोच के हम टाइम बचा लेंगे और उस टाइम जल्दी डिसीजन ले लेंगे, कई बार पहले सोचने के कारण आप कुछ और डिसीजन ले लेते हैं एंड एक्चुअली एट दैट प्रेजेंट मोमेंट समथिंग एल्स वुड हैव बीन अ बेटर डिसीजन.
2: दैट्स वेरी ट्रू.
1: बट यू ऑलरेडी क्रिएटेड योर डिसीजन एंड यू क्रिएटेड योर डिसीजन 5 मिनट्स और 50 मिनट्स बैक. Situation has changed, time has changed. You need to take your decision now. लेकिन हम कहते हमने तो पहले ही सोच लिया था.
2: और अब वो क्योंकि वो decision लिया हुआ होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम ऐसा करेंगे. It's so difficult to change that decision.
1: हम सोचते नहीं. उस time हमने already decision ले लिया and we think कि हम बहुत time बचा रहे हैं तो हम तुरंत वो जो past में decision already सोच लिया हम उसको use कर लेते हैं. Creativity means हर moment को देखते हुए, क्योंकि सिचुएशंस हर चीज मोमेंट टू मोमेंट चेंज हो रही है. मैं मेंटली इतना ऑक्यूपाइड हूं कि मुझे सोल्यूशन सामने होते हुए भी नहीं दिखाई देता. ओनली इफ आई क्रिएट वन थॉट कि मेरे साथ जो हो रहा है वो मेरे लिए एक्यूरेट हो रहा है. अगर मेरी ट्रेन मिस हुई है वो सिर्फ इसलिए क्योंकि इसमें भी मेरे लिए कुछ बहुत अच्छा है. डजंट मीन गो लेट फ्रॉम हाउस फॉर द स्टेशन. आप अपना हर चीज
2: चेकिंग तो करनी पड़ेगी.
1: पहले आप अपना हर चीज प्लान एक्यूरेटली करो, टाइम पर पहुंचो. लेकिन अगर वो निकल गई है, नाउ व्हाट? नाउ बिकॉज आई एम गोइंग टू यूज सम अदर ऑप्शन. एवरी मोमेंट ध्यान ये रखना. ट्रेन छूट गई कोई बात नहीं, ये तो ना छूट रहा है ना, यही छूट जाता है, यही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है.
2: ट्रू. तो समवेयर वो जो स्ट्रेस क्रिएट हो रहा था वो अब समझ में आया कि वो मेरी अपनी क्रिएशन थी. सो इधर आई क्रिएट स्ट्रेस और आई क्रिएट हैप्पीनेस. What is it you would like to create? Again, it's amazing how this journey goes, you know. You start feeling so empowered and relaxed suddenly. कि सब कुछ जो हो रहा है उसके होते हुए भी मैं जो हूँ वो नॉर्मल हूँ. थैंक यू सो मच. शांति, आपके पास कोई सवाल है? हो सकता है कि कई बार क्योंकि डिस्कशन हो रहा होता है कुछ सिचुएशंस हम ना ले पा रहे हो. आप सामने रखिए ऐसी सिचुएशंस जहां आपको लगता है कि आपका चेंज बिलीफ सिस्टम नहीं एग्जिस्ट कर पाता, मतलब वही बिलीफ सिस्टम काम कर रहा है और आप नहीं चेंज कर पा रहे, तो आप हमारे साथ जरूर शेयर करें, या तो फोन पर या फिर ईमेल पर. हमारे फोन नंबर हैं 0124-266-7000, 999-344-555, 999-344-666, 9873-666.

ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी दिखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406 660 960 दे या फिर विजिट करो बंसल इमीग्रेशन.com।

0: थोड़े मोडे नाल मोडा मिला के थोड़ी तरक्की दी राह नूं होर वी सौखा अते सुरक्षित बनाउण दा वादा करदा है वेरी बी टोयोटा।
1: जिते है टोयोटा दी बेस्ट टेक्नोलॉजी, बेस्ट कस्टमर सर्विस अते बेस्ट गूगल रिव्यूज। तुहाडी जरूरत अनुसार प्रितपाल सिंह तुहानू हेल्प करनगे तुहाडी अपनी टोयोटा चूज करन लई जो ने एक दहाके तों वेयर बी टोयोटा दे नाल।
0: बेस्ट डील लई कॉल करो 0431-465-186 ते 212-216 ओल्ड जी लोंग रोड हॉपर्स क्रॉसिंग। वेरी बी टोयोटा, द स्मार्ट चॉइस।

0: जी गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: और जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स तंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन से मिलेंगे।
1: आहो जी आहो।
0: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
2: यार तू इत्थे इनी छेती आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
3: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एएटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
2: नंबर ता दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
3: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 पे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।

0: हाँ भाई सिडनी वाले हो, तुसी सुन रहे हो सिडनी दा अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी।
1: अज दा विचार, अज दी कहानी, हर रोज तुसी सुन दे हो शो हांजी मेलबर्न विच। तो हाड़ी डिमांड उते आओ एक बार फिर सुन दे हां इस हफ्ते दी एक बेहतरीन कहानी।
2: रेडियो हांजी 1674 एम समा हो चुका अज दी कहानी दा, अज दे विचार दा। एक बार एक गुरु अपने चेलियां नूं लैके काली काली दे नाल रस्ते दे उत्ते जा रहा ते नाल दी नाल समझा रहा, वेखो आपां हुण नदी दे पवित्र पानी दे नाल अपने आप नूं साफ कर लिया, इशनान करके आपां आए हां। याद रवे रस्ते दे विच तुहाडे वस्त्र गंदे ना होण, क्योंकि आपां रस्ते दे विच पैंदा एक नाला क्रॉस करके मंदिर दे विच जाणा, तो उत्थे अज दा दिन तुहाडे विचों एक उत्तराधिकारी चुनिया जाएगा। जो कुछ भी तुसीं हुण तक सिक्ख्यावां दे रूप दे विच मेरे कोलों सिख्या, उस सारे कुछ दी अज तुहाडी परख होणी। ख्याल रवे जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां भी तुसीं सिक्खियां ने उह अज दे दिन चिंतन दे विच रहिण। इसे तरह दीआं काफ़ी सारीआं हदायतां दिंदा गुरु। चल रहा आखिरकार एक नाले दे उत्ते पहुँचते ने, एक गंदा नाला क्रॉस करदे आ, शेष तां अगे लंघे ने, पर गुरु जदों लंघन लगा तो गुरु का करमंडल इस नाले दे विच डिग पिया। पानी इन्ना ज़्यादा गंदा, इन्ना ज़्यादा गंदला कि दिख नहीं रहा करमंडल दिखिया सुटिया जां डिग्गिया कित्थे कि जे। गुरु ने कुछ कहा तो नहीं पर अपने चेलियां वाल वेख रहा कि हुणे की करदे ने। मन दे विच कल्ले कल्ले चेले दे इहो चल रहा कि जे आपां नाले दे विच उतरे, जे करमंडल लभण दे लई गए, फिर दोबारा तो दूर नदी दे विच नहाउण दे लई जाणा पऊगा, इशनान करन दे लई जाणा पऊगा, ते फिर आपां काफ़ी लेट हो जावांगे। जिहड़ा भी उतरिया हो सकता उहदा चांस मिस हो जाए। तो होर भी बहुत सारे विचार मन दे विच चल रहे ने, इन्ने गंदे पानी दे विच आपां क्यों उतरीए, क्यों अपने आप नूं आपां गंदा करिए। तो कुछ एक तो शायद ये भी सोच रहे ने कि करमंडल ही आ, फिर कि गल है, होर लिया जाऊगा, आश्रम जावांगे उत्थे होर बथेरे पए ने, इंतजार दे विच ने कि गुरु अपने कदम अगे पुटे तो आपां भी इहदे पिछे पिछे हुण चलीए। पर गुरु उत्थे खड़ा, गुरु दे दिल नूं ये करमंडल बहुत प्यारा, उस तो बिना अगे नहीं जाना चाहुंदा। तो अचानक एक चेले का ध्यान एक पासे छोटी जी उम्र दे एक नौजवान दे उत्ते पैंदा। वह नौजवान जिहड़े जिहदे मैले चले जे कपड़े ने, तो इस नाले दे एक पासे बैठा कुछ ना कुछ कर रहा, जिवें अपने नित दे रूटीन दे विचों कुछ ना कुछ करके अपना रोटी पानी का जुगाड़ कर रहा हो। चेले दे मन दे विच विचार आया, होवे ना आप अपने कपड़े गंदे करन दे नालों इहनू कहा जावे, इहनू ते कोई फर्क नहीं पैना। चेले ने उहनू आवाज़ मारी, अपनी सूझ बूझ विखाई, ते गुरु नू काफ़ी प्रभावित किया जदों उहनू मना लिया कि तू इस नाले दे विच उतर के गुरु का करमंडल कढ के लियावेंगा, इहदे बदले मैं तैनू एक सोने की मोर देंगा। ये नौजवान जिहड़ा कि किसी गरीब घर का लगता ही, इहदे लई बड़ी वड्डी गल सी, झट नाले दे विच उतरिया ते थोड़ी देर बाद वह करमंडल कढ के बाहर लै आया। पर उन्नी देर तक उहदा शरीर पूरी तरह के नाल लिबड़ चुका है, तो उन्हूं शायद इस चीज़ के नाल कोई फर्क भी नहीं सी पैंदा क्योंकि उहदा नित दा काम सी, उन्हें तो रहना ही इत्थे सी। इदां दे ही मैले कुचले करमंडल कढ़िया बाहर, तो कढ़न तो बाद झट एक चेले ने हाथ वधाया कि हुण इहनूं मैं शायद धो लूँगा। चंगी तरह के नाल धोता बनाया, सकवांज किया, तो गुरु ने अपने हाथ च फड़ लिया। जांदे जांदे गुरु दे मन दे विच खरे की आई उस छोटी उम्र के नौजवान नूं आवाज मारी ते कहा, जे तू बुरा ना मनावे ते अज दे दिन तेरे कोल होर काम कोई ना होवे ते तू ही साडे नाल मंदर वल नूं चल। रस्ते दे विचों तेनूं कितों इशनान भी करा देंगे। ये नौजवान ये गल सुन के काफ़ी एक्साइटेड हुंदा, काफ़ी उत्सुक हुंदा कि जिथे जा रहे ने मैं भी तो जावां, किथे ये लोग जांदे ने, क्यों ये लोग मेरे नालों वक्रे ने, की इन्हां दे विच खास है, एहो जिहा की इन्हां ने कीता कि अपने तानू ये भुरा भी गंद नहीं लगन देना चाहते, मेरे नालों की वक्रा जरूर जाना चाहिए। नौजवान हौली हौली पिछे तुर पैंदा, चुप चाप पिछे तुरै रहिंदा, जिदा वह सिमरन करते हैं राह दे विच जो भी भजन बंदगी करते हैं पिछे पिछे रिपीट करता रहिंदा। ते अज जदों इस सारे समागम तो बाद प्रोग्राम तो बाद उत्तराधिकारी ऐलानिया जाना सी, उन्हां सारयां दे विचों एक चुनिया जाना सी, ते सारयां दे कन्न इह सुण ली उतावले सी कि आखिरकार वह ना किहदा हुंदा। अपने आप दे विचों एक दूसरे दियां क्यास लाईयां रा रहे ने, पर ये कि गुरु ने उस मुंडे दा नां ऐलान दिता जिन्ने उहदा करमंडल कढ़िया सी। वह गरीब लड़का जिन्हें अपने आप की परवाह नहीं की, जिन्हें यह नहीं वेख्या कि मेरा कोई नाता नहीं है गुरु के नाल, इस सारे कुछ के बावजूद उन्हें गंदले पानी दे विच उतर के मेरा करमंडल कढ़ के लिया, तो उस तो बाद वह सोने की मोर भी लैण तो मना कर दिता, ये कह के कि तुसी भले लोग हो, तुसी रब दे नाल जुड़े लोग हो, मैं तुहाडे कोलों पैसे थोड़ी लवांगा। इन्हां चीज़ां नूं वेखदे होए शायद गुरु ने इस मुंडे नूं चुन लिया, ते दूसरे नूं कहा सालां दर साल तुसी मेरे नाल रहे हो पर एक प्रीख्या तक नहीं पास कर सके, तुहानूं इह चीज़ नहीं समझ आई कि गुरु दी की रमज हुंदी, तुहानूं इह चीज़ नहीं समझ आई कि गुरु दा तुहाडियां नज़रां दे विच की स्थान होना चाहिए। पर हुण समां लंघ चुका सी, सारे सोच रहे ही कि ये की हो गया, इदां किदां हो सकदा एक मिल के चले व्यक्ति नूं ते जिहड़ा गुरु नूं अज पहले दिन मिलिया इहनूं ये किदां गद्दी दे सकदा। पर हुण नूं कुछ भी हो सकदा, जिहदे ते कहिंदे ने गुरु की नज़र सवली होगी बस होगी। कहानी सानूं बहुत कुछ दसदी है, ते सब तो वड्डी चीज़ कदी भी अपने काम किसी कोलों कराउण की कोशिश ना करो। शायद चेलिया ने चलाकी दे नाल किसी कोलों करमंडल कढ़वा तां लिया, काम रुकया नहीं, उन्होंने भी कढ़ना ही, उन्हें भी कढ़ता, पर किसी का किया काम तुहाडे अपने हथीं कीते काम दे नालों बेहतर नहीं हो सकता। इस तरह के नाल आपां अपने कामकारां दे उत्ते भी करते हैं, अपने दुनियावी कामां दे विच भी आपां कदी भी वेख लीए जिहड़ा काम तुसीं अपने हथीं कर लैणा, वह वाली सफाई, वह वाली नेचा, वह कदी किसी दूसरे जिन्हों तुसीं पैसे दे के काम कराउंदे हो उहदे विच नहीं आऊगी। तुसीं घर की सफाई करा लो, तुसीं बाहर अंदर कितें कोई अपने कामकार दे उत्ते कोई किसी नूं बुला लो, कोई लख अपना 100% ला के वह काम करन दी कोशिश करे, पर फिर भी वह काम किसी ना किसी पक्षों अधूरा रह जाता, तुहाडे पक्ष तो, तुहाडियां नज़रां तो। काम भावें उही होना हुंदा पर जे उह तुसीं कीता उहदी वैल्यू कुछ होर आ, किसी कोलों तुसीं करवाया तो उहदी वैल्यू कुछ होर आ, खास तौर दे उत्ते जदों एक उत्ते खसम वेखण वाला होए। इस तरह के नाल साडे दुनियावी कामां दे विच साडा अरदास करवाउणा वी आ, असीं अपने आप दे लई कुछ मंगणा होवे तो आपां किसी दे हत्थ दे उत्ते धेला पैसा धरदे आ, तू मेरे लिए अरदास कर, शायद तेरी रब ज्यादी सुन ले। कहिंदे ने जो तुसीं करना वह तुहाडे मनों निकलना, तो जो तुहाडे मन दे विच चल रहा वह तुसीं किसी नूं हूबहू कदी भी नहीं दस सकते, ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।
1: ਧੰਨਵਾਦ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਨ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਕਹਾਣੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਵਿਚਾਰ, ਖਬਰਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ ਦਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ।

0: सुनो जी, गड्डी अक्षरा ज्वेलर्स वाल ले लो।
1: ओ जो हुकम मेरी सरकार।
0: ओ आ किधर, हैरी स्पार्क वाल जाना, तुसी आ किथे जा रहे हो?
1: अक्षरा ज्वेलर्स दी दूजी लोकेशन रिवर्स टंच।
0: यानी हुन 22 कैरेट गोल्ड हॉलमार्क ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी अते बर्थ स्टोन रिंग्स दे नवे डिजाइन, सिल्वर आइटम्स, पूजा आइटम्स, सब कुछ हुन दो दो लोकेशन ते मिलनगे।
1: आहो जी आहो,
2: अक्षरा ज्वेलर अपनी दूजी लोकेशन 56 गारफील्ड रोड, ईस्ट रिवर्सटन विच वी तुहाडी सेवा विच।
3: फुलकारी उत्ते बेल बूटियां, मित्रां दे चादरे ते पादे मोरनी। सत श्री अकाल जी, मैं तुहाडा अपना गिप्पी गरेवाल, तुसी सुन रहे हो हां जी रेडियो।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: हाय, मैं हूं कपिल शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो हांजी 1674 AM। और ये जिन्होंने रेडियो ये खोला है वो मेरे दोस्त हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे गाने चलाएंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं कि ये जो भी चलाएंगे बहुत अच्छा चलाएंगे और आपको बहुत मजा आएगा। सुनते रहिए रेडियो हांजी 1674 AM। थैंक यू।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा।
1: हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी हांजी
2: रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।

0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ए है 8 सालां तो भी वद्दा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्हां ने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे, या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, ध्यान से इश्क कीजिए, क्योंकि शादी भी हो सकती है। सो दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना राजीव ठाकुर और आप सुनते रहिए रेडियो हाँ जी 1674 AM। हंसिए, मस्त रहिए, नाचते रहिए, खुश रहिए।

0: सिडनी वाले हो तुसी सुन रहे हो अपना इंडियन रेडियो स्टेशन रेडियो हांजी 1674 AM रेडियो
1: हांजी। विश्व पद्धर ते तेल दी काट सानू सब नु प्रभावित कर रही है। सरकार कोल एक राष्ट्रीय तेल सुरक्षा योजना है अते असी इस वेले दूजे पद्धर ते हां। अपनी कार दी काट अते वधेरे कुशलता नाल वरतों ट्रक ड्राइवरां किसानां अते जरूरी सेवावां लई तेल बचाउण विच मदद करदी है। हर छोटी कोशिश मददगार है। fuelplan.gov.au/punjabi ते जाओ। आस्ट्रेलिया सरकार कैनबरा वल्लों जारी।

0: लग गया ना पता फिर केड़ा रेडियो बजदा। हांजी हांजी हांजी हांजी
1: हांजी हांजी रेडियो हांजी 1674 AM 24/7 इंडियन रेडियो सिडनी का अपना इंडियन रेडियो स्टेशन।